0: नहीं,
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. We got

भाई जय जय बजरंग बली, मैं आ गई हूँ। मंडे दोबारा हो चुका है। दिस इज इपी द हिपी एंड यॉल आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डैलस। गाइज, आपका मंडे कैसा गया? मेरा एक्चुअली मंडे उतना बुरा नहीं गया। आई वॉज काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, आई वॉज काइंड ऑफ चिलिंग, क्योंकि पता है क्या, बहुत दिनों बाद पिछले हफ्ते मैंने पागलों की तरह काम नहीं किया। ऐसे ही मैंने 4 14 14 घंटे की शिफ्ट नहीं मारी रोज। ऐसे नहीं किया कि 14 घंटे कभी यहाँ से भाग रही हूँ वहाँ से भाग रही हूँ, पूरे DFW के दर्शन कर रही हूँ। मैंने पिछले हफ्ते नहीं किया। आई एक्चुअली स्लेप्ट अ लॉट, आई मेट माई फ्रेंड्स, आई एन्जॉयड द 4th of July वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मज़ेदार किया। बाय द वे, आप लोगों का 4th of July कैसा था? डिड यू गो एंड सी सम फायरवर्क्स? मैंने तो आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ट्यूसडे को मैंने आप सबको बताया था एक बहुत सारे ऐसे फायरवर्क्स के बारे में। आई होप यू वेंट एंड सॉ सम ऑफ देम, बिकॉज अगर आपने नहीं देखा तो DFW में इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, यू नो, यू मस्ट गो चेक इट आउट। हम कुछ कुछ तो बताते हैं और कुछ कुछ नहीं बताते हैं। अगर नहीं बताते हैं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो यार, गूगल पे सब कुछ मिलता है। भाई इवेंट्स की बात करते हुए, बाय द वे, डिड यू नो सिर्फ एक हफ्ता, करीबन सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। 12th July को विशाल एंड शेखर आर कमिंग टू DFW, ओके? यू नो द बिगेस्ट सुपर हिट डुओ विद अ लॉट ऑफ दीज अमेजिंग सॉन्ग्स। योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव। विशाल शेखर, दे आर कमिंग ऑन 12th July। कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं? कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड। द टिकट्स आर स्टिल एट सेल एंड यू शुड गो बाय देम बिफोर दे कम्प्लीटली सोल्ड आउट। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू बी इन अ पोजिशन वेयर दे आर कम्प्लीटली सोल्ड आउट। टिकट्स कैन बी बॉट एट काश पटेल प्रोडक्शंस .com। एंड बिकॉज आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, यू कैन गेट ए 30% डिस्काउंट बाई यूजिंग द कोड फन एशिया, FUNASIA, एंड गो एंजॉय द कॉन्सर्ट। क्योंकि यू नो उतने कॉन्सर्ट्स होते नहीं हैं, होते भी हैं तो एमी से होते हैं, बट यू नो यू शुड गो एंजॉय इट नेवरदलेस। तो आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम रियली कूल थिंग्स, बट बिफोर दैट द सॉन्ग।

0: सूरज
1: एंड वी आर बैक गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था, दिस इज आई थिंक योर लकी मंथ, क्योंकि पता है क्या, इस पूरे महीने मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गिव अवे है. एग्जैक्टली, देयर्स पूरे तीन गिव अवेज, दो टू फ्रॉम अ रेस्टोरेंट एंड वन फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर, इंडिया बाजार. सो यू हैव गॉट टू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मेरे गिव अवेज, अगर आपको पता है, 8 बजे के बाद होते हैं. सो यू हैव टू कीप लिसनिंग, ठीक है? इतनी जल्दी नहीं होगा कि भाई गिव अवे जीत लिया फिर आपने रख दिया, रेडियो बंद कर दिया, तो ऐसे थोड़ी ना होता है. इसीलिए हम 8 बजे तक आपको वेट कराते हैं, बिकॉज एंटिसिपेशन इज सो फन. भाई, एंटिसिपेशन से याद आया, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट समथिंग रियली कूल. टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स इन डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स. आई केम अक्रॉस दिस रियली इंटरेस्टिंग वीडियो वेयर दिस साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज एनालाइजिंग द मॉडर्न डेटिंग सिचुएशनशिप्स दैट आर गोइंग ऑन, वेदर इट्स डेटिंग एप्स, या फिर अगर आप सिंगल हैं, अरेंज मैरिज के उसमें हैं, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी डॉट कॉम वगैरह वगैरह, ये सारे सेम ही हो गए ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट. दे आर ऑल लाइक ऑनलाइन डेटिंग एंड दे ऑल काइंड ऑफ फील लाइक अ डोपामीन हिट, बिकॉज हाउ मेनी पीपल एक्चुअली लैंड अप मीटिंग देयर लाइफ पार्टनर्स थ्रू डेटिंग एप्स. आई एम श्योर एक टाइम पे बहुत मिलते थे, लेकिन अब तो थोड़ा वो भी नहीं मिल रहा है. तो वी गोना टॉक मोर अबाउट दैट, देन वी गोना टॉक अबाउट सम अटैचमेंट स्टाइल्स. लेकिन उसके पहले गाइज, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं, देन दिस इज फॉर यू, बिकॉज भाई मैं तो कुछ सालों बाद सोच रही हूँ घर खरीदने का. मैं अपने पैसे जमा कर रही हूँ, बट मे बी यू ऑलरेडी हैव द मनी सेव. सो इन दैट केस, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद अ ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998, ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटीज विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन एंड अ स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. They are licensed in all 50 states and their experienced team is committed to finding the right loan options for you tailored to your needs. अगर आप अपना first home खरीद रहे हैं, upgrade करें या refinance करें, then you definitely should check out Dream Home. They can make it easier for you, है ना? Start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage. Making dream homes happen, है ना? तो एक गाना सुनते हैं बिना एनीवेज बोले.

Well, if you follow आजकल के डेटिंग स्कूप्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज एंड एवरीथिंग, देन यू विल नो साइकोलॉजिस्ट हैव कम अप विद टू काइंड्स ऑफ टर्म्स. हम मोस्टली जो लोग होते हैं, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, यू मी, आपके पड़ोसी, आपकी भाई, आपके बहन वगैरह वगैरह, वी ईदर फॉल इंटू एन अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल या फिर एन एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल. तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, दे आर बेसिकली मोर सोशली आइसोलेटेड. देयर अटैचमेंट स्टाइल इज दे लाइक द स्पेस, दे लाइक टू स्टे. एंड हम लोग इसको कई बार इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें नहीं है. इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड आप हो सकते हो, यू कैन स्टिल बी, इवन इफ यू आर एक्सट्रोवर्टेड, यू कैन स्टिल बी एन अवॉइडेंट वाइल यू आर एक्सट्रोवर्टेड. एंड अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं, देन यू कैन स्टिल बी एन एंशियस अटैच्ड पर्सन वाइल यू आर इंट्रोवर्टेड. दे कैन अप्लाई इन बोथ वेज. इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड आर पर्सनैलिटी टाइप्स, पीपल हु लाइक द सोशल इंटरेक्शन वर्सेज डोंट लाइक द सोशल इंटरेक्शन वर्सेज अटैचमेंट स्टाइल्स आर हाउ यू परफॉर्म इन ए रिलेशनशिप. ओके, वेदर और नॉट यू फील मोर सिक्योर बाय बींग वेरी क्लोज, एक्सट्रीमली क्लोज टू योर पार्टनर, कि आपको उनकी वैलिडेशन की जरूरत है हमेशा, ऑल द टाइम. कई बार क्या होता है, वी एक्सपेक्ट आर पार्टनर्स टू हमेशा हमारे साथ रहें, चिपक के रहते हैं. लोग कई बार बोलते हैं, अरे ये तो कितना चिपकू है, यू नो, सो चेप. मतलब दिल्ली में तो हम ये वर्ड यूज़ करते थे, चेप बोल के बड़ा. सो दोज आर रिलेटेड टू एंशियस अटैचमेंट. एंड अवॉइडेंट इज जो आप कितनी भी उनको अप्रोच करो, कहते वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, जब तक उनको आपके पास नहीं आना है वो आपके पास नहीं आएंगे. सो वील टॉक मोर अबाउट दिस इन डिटेल, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गाना, एंड देन वील कम बैक एंड टॉक सम मोर. आई विल टेल यू व्हाट माय स्टडीज एंड माय रिसर्च शोड अप.

सो गाइज, अटैचमेंट थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे थे, इट्स नॉट समथिंग न्यू. इट्स जस्ट इट्स कम अप अ लॉट, एटलीस्ट ऑन माई सोशल मीडिया. मे बी बिकॉज माई एल्गोरिदम इज लाइक दैट एंड आई टॉक अबाउट लव एंड डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स हियर, सो इट्स शोइंग मी मोर ऑफ दैट. लेकिन मे बी आपके एल्गोरिदम में कुछ और आ रहा होगा, मेरे एल्गोरिदम में तो ये आ रहा है. बट कमिंग बैक टू दैट, अटैचमेंट थ्योरी वॉज फर्स्ट डिवेलप्ड इन द 1950s बाय अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड जॉन बोलबी. इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स बिन देयर फॉर एवर. लेकिन कई बार क्या होता है, एटलीस्ट इंडियन सोसाइटीज में, साउथ एशियन सोसाइटीज में, मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है, लाइक सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन दिस अटैचमेंट थ्योरी, आई कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, वेदर इट्स माई पेरेंट्स और इट्स माई फ्रेंड्स. लेकिन हम लोग को पता नहीं होता, लाइक बिकॉज मे बी वी आर नॉट एक्सपोज टू दैट, दोज आइडियाज और कॉन्सेप्ट और दोज पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स एज वेल दैट हेल्प अस मेंटेन ए हेल्थी सिक्योर रिलेशनशिप एंड अ हेल्थी सिक्योर बाउंड्री इवन विद आर पार्टनर्स. तो क्या है क्या अटैचमेंट थ्योरी? अटैचमेंट थ्योरी इज बेसिकली जस्ट द वे वी कनेक्ट विथ अदर पीपल. ओके, एंड दैट काइंड ऑफ कनेक्शन, इट्स नॉट नेसेसरली जस्ट विथ योर पार्टनर. इट कैन बी द वे यू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड या फिर द वे यू कनेक्ट विथ योर फैमिली, योर सिबलिंग्स. इट कैन कम अप इन वेरियस डिफरेंट सोशल सिचुएशंस. लेकिन क्योंकि हम लोग डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी विल जस्ट लिमिट आवरसेल्व्स टू दैट फॉर नाउ. ओके, इट इज बेसिकली जस्ट द वे वी कनेक्ट विद अदर पीपल एंड इट इज द वे वी गिव एंड शेयर एंड रिसीव लव. आप किस तरह से प्रेफर करते हैं टू रिसीव लव? व्हाट मेक्स यू फील मोर सिक्योर? व्हाट मेक्स यू फील अनसेफ इन अ रिलेशनशिप? एंड दोज थिंग्स, दैट इज हाउ आर नीड्स आर मेट, हाउ वी फील सेफ एंड सिक्योर इन अ रिलेशनशिप सेटिंग. सो दिस इज व्हाट अटैचमेंट थ्योरी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट. हम लोग जब वापस आएंगे, एक गाना मैं बजाती हूँ, वापस आएंगे, देन आई विल टेल यू टू वेज how people feel secure in a relationship, what is secure attachment versus what is insecure attachment, and those are perfectly valid. Maybe you identify with some of these situations right now in your current situation with your partner, wife, whoever it is, husband or your boyfriend, girlfriend, doesn't matter. Maybe you relate to it, maybe you don't, but we'll come back and talk some more about it. Tab tak ke liye ye gana.

बाय द वे गाइस, डेटिंग की बात करते करते एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो तो मतलब इट्स नॉट रियली रिलेटेड टू डेटिंग, बट इफ़ यू डोंट हैव दिस देन आई डोंट थिंक यू कैन डेट. तो डिड यू नो हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू मेक एन एमरजेंसी फंड टू कवर योर बेसिक ओवरहेड कॉस्ट विथ नो इनकम? अगर कल को आपकी जॉब चली जाती है, अभी ले ऑफ्स हो ही रहे हैं, सबको पता है, आपको पता है कितने चाहिए पैसे आपको बचाने के लिए? टेक्निकली इट्स आइडियली 3 to 6 months एमरजेंसी फंड दैट ऑल फाइनेंशियल प्लानर्स नाउ डेज रेकमेंड. लेकिन बाय द वे, डिड यू नो रिसर्च शोज दैट अ टिपिकल अमेरिकन वर्कर, ठीक है, आई थिंक हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, हम थोड़े से ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल है इस मामले में, लेकिन फिर भी इट सेज दैट अ टिपिकल अमेरिकन वर्कर हैज़ ओनली $5,000 इन एमरजेंसी सेविंग्स. $5,000 में तो भाई आपका रेंट और ग्रोसरीज 2 महीने का मुश्किल से बहुत टाइट प्लानिंग करके निकल सकता है फॉर मे बी वन पर्सन. लेकिन अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइनेंशियली प्लान इट. ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू पे अटेंशन टू इज दैट 1 in 5 people एक्चुअली हैव नो सेविंग्स. तो आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में? इसीलिए आपको पता है क्या करना चाहिए, यू शुड कॉन्टैक्ट माई टाइम एक्विटी. यू नीड अ फाइनेंशियल प्लानर. ओके, दिस इज वॉट यू नीड. माई टाइम एक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाए हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, द वे टू ग्रो मनी एंड द वे टू जेनरेशनल वेल्थ इन टूडेज मार्केट इज नॉट बाय डूइंग योर जॉब ओनली. यू हैव टू इन्वेस्ट. ओके, सो वेदर यू आर प्लानिंग ए लॉन्ग टर्म वेल्थ रिटायरमेंट या फिर यू जस्ट वॉन्ट टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स एंड दे माइट इवन हेल्प यू मेक एन एमरजेंसी फंड. सो गिव अ कॉल टू mytimeequity.com और कॉल 4697021272. तो जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट एंक्शियस एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? अवॉइडेंट इज दैट काइंड ऑफ पीपल, आर दोज काइंड ऑफ पीपल हु पुल बैक इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन ऑर्डर टू फील सेफ. ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वेदर इट्स वर्क, वेदर इट्स लाइक ए फाइट विथ योर पार्टनर, या फिर I don't know, you go on a vacation and something goes wrong and suddenly you are like, oh my god, I need my space, I need to go alone, mujhe ek walk ki zarurat hai and I need to be by myself to think clearly, ya fir I just don't want to deal with this right now, let's push it aside, let's put it under the rug, uske baad mein baat karenge, apne aap hi sab agle din sort ho jayega, magically sab bhul jayenge. That is an avoidant attachment. Who pulls back? They don't want to deal with the stuff. They don't want to deal with the situation. They're just like, I'm just going to do my thing, okay? I'm just going to go away. Ya fir, are you that kind of a person who feels the need to fix everything all the time? Arey, koi stressful situation ho rahi hai. Oh my God, OMG, OMG. What can I do to fix it right now? You go looking for love because, I mean, this is a very typical sign of anxious attachment people. You go looking for love outside because maybe there is something lacking on the inside. The need for validation, the need for, you know, the thing like we don't feel good enough. So aap wo cheez apne partner mein dhoondte ho ki I mean you don't feel complete enough, so somehow your partner is going to come into your life and make you complete. But aise nahi hota yaar. I mean, somehow you have to seek that validation on the inside. So those are people who are anxiously attached, and somehow we just, no matter who comes into your life, you just latch on to them so tight. Aap unko chhodne ke liye unko bilkul space nahi dete ho to breathe, and then you hang on to them so tight that you know, it's like almost like are nahi ye hona chahiye, like that. So that is anxious attachment. So we will talk more about this, lekin uske pehle chhota sa gana.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
5: AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Documents या parcel भेजनी है?
7: हाँ।
6: घर relocate करनी है?
7: हाँ।
6: गाड़ी भी transport करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
6: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
8: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर move का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है digital media platform पर. कई million followers के साथ, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से social injustice और corrupt practices के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. Dallas और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए The Jago Times available है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
10: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
11: इट्स लॉसन।
10: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
11: इट्स लॉसन।
10: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
12: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
17: Calculating route. Rerouting.
16: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
17: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
16: क्यों?
17: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत। फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
16: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
18: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
17: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
16: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप। डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट। Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
19: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
20: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
21: गाइज, वी आर बैक। और अभी हमारा टाइम वैसे तो हो चुका है गेम खेलने का, लेकिन गेम खेलने से पहले मैं एक छोटा सा गाना आपके लिए बजाऊंगी, उसके बाद आके हम गेम खेलेंगे, ठीक है? तब तक मैं गेम क्यों करती हूँ, मैं थोड़ा लॉस्ट हो गई अपने टॉपिक में आज, तो इसीलिए मैंने क्यों नहीं किया टाइम से। तो आप पहले ये गाना इन्जॉय करिए, देन वील प्ले द गेम।

एंड वी आर बैक गाइस. हम खेलने वाले हैं हमारा गिव अवे. ये बहुत इजी है. आई मीन यू नो हाउ टू प्ले दिस. वेल, मैं गाना बजाऊंगी फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड सॉन्ग एंड देन दैट्स द प्राइज. लेकिन आप क्या जीतेंगे आज? पहला तो मेरा फेवरेट फ्रॉम द फन पिज्जा किचन. अगर आप कुछ देसी स्टाइल का पिज्जा खाना चाहते हैं, ये पेपरोनी हवाइन और ये सब बोरिंग बोरिंग पिज्जा खा के आप बोर हो चुके हैं. गाइज, थैंक यू फॉर द कॉल्स. लेकिन मैंने क्वेश्चन अनाउंस नहीं करी है, तो वी गोन होल्ड ऑन ओके फॉर द कॉल्स. सो हूएवर इज कॉलिंग, यू गोन हैव टू होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स टिल वी फिनिश दिस गिव अवे. तो फन पिज्जा किचन वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. अगर आप वेजी है, देन यू हैव टू ट्राई दी अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विद दैट टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. एंड फॉर द मीट लवर्स, यू शुड ट्राई द तंदूरी चिकन पिज्जा. तो आप क्या जीत सकते हैं? यू कैन विन a $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम द फन पिज्जा किचन. एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर द फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो ओवर देयर एंड कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड. भाई, मैंने क्वेश्चन में नहीं पूछा, कॉल्स आ रही है. एक लेट मी टेक दिस कॉल. तब तक आप ये गाना सुनिए एंड देन वील कम बैक एंड देन वील डू द गिव अवे क्वेश्चन.

बजाइएगा ना, मैं आके बजाती हूँ. तब तक के लिए गिव अवे खेलते हैं, ठीक है? आर यू गाइज रेडी? दिस इज योर गिव अवे क्वेश्चन. आई विल प्ले दिस सॉन्ग, आप उसका मुझे बॉलीवुड कॉपी बताएंगे मुझे. माई नंबर इज 972-235-5555 एंड हियर वी गो.

0: रेडियो को आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आवाज नहीं आती है। हेलो,
1: हेलो हेलो
0: हाय, कैन यू टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड, बिकॉज अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू हियर यू।
1: या इट इज टर्न्ड ऑफ।
0: ओके ग्रेट, फर्स्ट टेल अस योर नेम एंड सेकेंडली डू यू हैव द आंसर टू द क्वेश्चन।
1: यस आई डू। माय नेम इज अंकना।
0: अंकना,
1: यस।
0: ओके अंकना, वेरी यूनिक नेम। ओके, व्हाट इज द आंसर टू द
1: ओ थैंक
0: क्वेश्चन?
1: यू। ये शाम मस्तानी मदहोश किया जाए।
0: वेरी नाइस, थोड़ा गा भी दो यार ये, चलो साथ में गाते हैं। रेडी रेडी,
1: जी
0: लेट्स।

0: क्या बात है। ओके अंकना, विल स्टे ऑन द
1: थैंक यू
0: लाइन।
1: थैंक यू.
0: आई विल प्ले अ सॉन्ग इन द बैकग्राउंड। तब तक के लिए मैं आपका इन्फॉर्मेशन लूंगी, बट स्टे ऑन द लाइन। ठीक है गाइज, आप ये गाना एंजॉय करिए व्हाइल आई टेक अंकनाज इन्फॉर्मेशन। शी हैज वन द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम वन पिज्जा किचन। हियर वी गो।

यहाँ पे ड्राइव कर विंडशील्ड पे लिटरली 4 बूंदे गिरी बारिश की, एंड आई विश थोड़ी सी और बारिश हो जाए क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है. इट्स वे टू हॉट टुडे एंड पूरे हफ्ते इतनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है. अभी सिर्फ जुलाई चल रहा है, अभी तो अक्टूबर तक चलेगी DFW में इतनी गर्मी. मुझे अभी रहमान जी का कॉल आया जो एरिजोना से मुझे कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है दैट ही रिक्वेस्टेड कि भाई आप कोई बारिश वाला गाना बजा दीजिए. तो रहमान जी, ये मेरा फेवरेट बारिश वाला गाना है. और मैं जब छोटी थी ना, व्हेन आई वाज लाइक 9th या 10th स्टैंडर्ड में, जैसे ही बारिश कभी होती थी दिल्ली में, मैं जाती थी. अब मेरे पास वो बड़ा वाला डेस्कटॉप हुआ करता था, कौन सा, कॉम्पैक्ट के ब्रांड का बड़ा सा डेस्कटॉप हुआ करता था, और उसमें मैं जोर से ये गाना बजाती थी और फिर मैं बारिश में डांस करती थी. ये मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है बारिश की. तो आपके लिए ये मेरा फेवरेट बारिश का गाना.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
2: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
12: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.senadainc.com today.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप। डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट। Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
18: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

And guys, we are back. You're listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. Dallas nahi, only Dallas nahi, DFW pura hai. Kyunki main khud bhi Dallas mein nahi hu, main McKinney mein hu. Kyunki wahan pe Fun Asia ka office hai. Anyways, hey, mera pehle anyways chalega. Theek hai, ek hi bola hai maine aaj. पूरे 3 घंटे में, 1.5 घंटे में पहला वाला बोला है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस. हम लोग खेलने वाले हैं द सेकंड गिव अवे. तो सेकंड गिव अवे में मिलेगा क्या आपको? लेकिन वो गिव अवे देने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग. अगर आप कभी भी किसी भी फॉल एक्सीडेंट में फंस जाते हैं जिसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसे नहीं कि भागते भागते गिर गए यार पार्क में, दैट्स नॉट द फॉल इंसिडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. We are talking about, say, you're in a public place like a restaurant or something. And वहाँ पे ना floor cleaning करते करते पानी पड़ा हुआ है बहुत सारा, और आप उस सोपी पानी में फिसल के गिर गए और आपकी हड्डी पसलियाँ टूट गई और पीठ में मोच आ गई और कुछ कुछ हो गया. या फिर अगर आप किसी भी ट्रक या गाड़ी के एक्सीडेंट में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे स्ट्रेस आउट करने के अलावा? बहुत कुछ होता है करने को, लेकिन जब वो मोमेंट वाली सिचुएशन आती है ना, तब उतना हमारा दिमाग चलता नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट डीलिंग विद ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल द ड्रामा एंड ऑल द ट्रामा. तो इन दैट केस कीप वन नंबर इन हैंडी. यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स. यू नीड टू कॉल द पुलिस क्योंकि वो दे विल टेक केयर ऑफ दिस. एंड द सेकेंड पर्सन यू नीड टू कॉल इज अटर्नी ओमर ख्वाचा. He will come and fight your case and help you get the compensation that you deserve. क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस भी चाहिए होता है, नहीं तो यू नो मेडिकल एक्सपेंसेस, गाड़ी के रिपेयर के खर्चे वगैरह वगैरह, एंड इंश्योरेंस कंपनीज डोंट रियली वॉन्ट टू पे. ओके, सो डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. सो यू नीड एन अटर्नी हु नोज हाउ टू डील विद ऑल दिस स्टफ. ओके, ही विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू एक्चुअली विन. फॉर अ फ्री कॉन्सल्टेशन कॉल 4693005046. ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए गेम खेलते हैं. लेकिन गेम में आपको मिलेगा क्या आगे मैं बताती हूँ. हमारा दूसरा गिव अवे है फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. अगर आपको नहीं पता, रेड हॉट चिली पेपर हैज लाइक दिस इनक्रेडिबल मेन्यू. देयर फूड इज आल्सो सो सो गुड. एंड देव आल्सो स्टार्टेड अ बंगाली मेन्यू, बंगाली स्नैक्स का मेन्यू. हमने फन एशिया वालों ने वहाँ का एक प्रोमो भी किया था कुछ महीनों पहले, सो दैट वॉज प्रीटी कूल. तो गिव अवे डिशेज में क्या है? ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न, या फिर डैलस बेस्ट बटर चिकन विच इज आर एच सी पी, रेड हॉट चिली पेपर्स चिकन मक्खन वाला चिकन. ओए होए बोटी छोटी. यू कैन पिक अप द गिव अवे फ्रॉम एनी ऑफ दीज लोकेशंस विच इज रिचर्डसन, मैकिनी और एलन. तो अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करते हैं देन यू कैन गो टू रेड हॉट चिली पेपर एंड चूज फ्रॉम ईदर ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न और द बेस्ट बटर चिकन इन डैलस. ठीक है, तो चलिए खेलें. तो गेम सिंपल है, लाइक ऑलवेज आई विल प्ले अ सॉन्ग, यू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. नाउ दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम द 1970s. ओके, आई विल गिव यू अ लिटिल हिंट बिकॉज उतना पॉपुलर, वैसे मुझे तो लगता है काफ़ी पॉपुलर गाना है क्योंकि ये पिक्चर, ये मूवी तो मैंने इतनी बार देखी हुई है, इतनी बार देखी हुई है. जी सिनेमा पर हर 2 दिन में आती रहती है मूवी. और अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल टेल यू, इसमें हेमा मालिनी का डबल रोल है और संजीव कपूर है और धर्मेंद्र है. ठीक है, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट विच मूवी इट इज. तो उसी मूवी का गाना है एंड

0: side. Just
1: hi, Khadija Radio, you're on air. Can you hear me?
2: Hi, yeah, I can hear you.
1: Okay, great. First, tell me your name and then tell me the answer.
2: My name is Preeti, and I think the answer will be Sita or Geeta.
1: Yeah, the movie Sita or Geeta, but we are looking for the Bollywood song, which is the copy.
2: I don't think.
1: No? Oh, that was a call drop. Never mind. Guys, not figured it out? Main ek hint deti hu aapko. Usme Hema Malini and Sanjeev Kapoor, they are walking on a beach and it's like a love song. Koi na na na na na na na na na na na. And we have a next call. Hi, Phanasia Radio. Thank you for calling.
3: Hello.
1: Hello.
3: This is Rahul here.
1: Rahul, hi, how are you? आपने पिछले एक महीने में कोई गिव अवे जीता तो नहीं है ना?
3: मैंने फन एशिया का मतलब वो फन पिज़्ज़ा वाला जीता है, ये नहीं जीता है.
1: राहुल चलो देखते हैं, लेट्स सी इफ यू हैव द आंसर. क्योंकि और कोई कॉल मेरे पास आ नहीं रही है.
3: कल रात कोई मुझे लड़का सपने में मिला.
1: अरे वाह,
3: ला ला ला ला ला.
1: यार यू नो योर बॉलीवुड रियली वेल, सो गुड.
3: ये मेरे फादर इन लॉ ने, ये वाला मेरे फादर इन लॉ ने आंसर दिया. ऑफ कोर्स आई कॉल्ड बट ही गिव मी, यस ही विंस द वाउचर.
1: तो टेक्निकली अंकल के नाम ये वाउचर है. अंकल का नाम बताइए फिर राहुल.
3: अंकल का नाम महेश.
1: महेश, महेश अंकल कांग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं फन पीज़, नहीं फन एशिया रेडियो की तरफ से रेड हॉट चिली पेपर का गिव अवे. थोड़ा
3: थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
1: अप्लॉज भी हो जाए थोड़ा सा.
3: ये वाला रियली डिफिकल्ट था.
1: हाँ, ये थोड़ा मुश्किल था. इट्स वन ऑफ दोज अननोन सॉन्ग. तो राहुल, आई एम गोना पुट यू ऑन द लाइन एंड देन यू गिव मी महेश अंकल्स इन्फो. ओके
3: ओके
1: ओके गाइस, आप तब तक ये गाना एंजॉय करिए एंड यू स्टे ऑन द लाइन.

guys, this part of the show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firms in the US. अगर आप मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर यू हैव टू मेनी साइड हसल्स लाइक मी विच आई लव टू डू बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज़ वर्ल्ड वन W-2 वाला जॉब इज नॉट इनफ स्पेशली इफ यू हैव अ बिग फैमिली विच आई टेक्निकली डोंट बट वी डू हैव स्टूडेंट लोन्स एंड वगैरह वगैरह. आपको मेरे बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है लेकिन आई एम श्योर यू ऑल रिलेट टू दिस स्टोरी राइट. तो If you have tax planning and figuring out how to pay like thousands and thousands of dollars of tax money, vagera vagera, to the government, and you kind of want some help on how to figure it out, then you need to call AG Fintax. They offer innovative financial services for both individuals and businesses with untapped potential. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. So, agle saal ki tax planning abhi se kar lo, nahi to fir baad mein bhaga bhagi lag jayegi, okay? Call 469-942-9888 or visit agfintax.com. So, guys, aage badhte hain bina anyways bole. So, I will play you this song and you come back and we have one more giveaway for you guys today. पर वो रेस्टोरेंट का गिव अवे नहीं है, इट्स एक्चुअली अ प्रीटी कूल गिव अवे. इट्स फ्रॉम लाइक दिस ग्रोसरी स्टोर कॉल्ड इंडिया बाजार. सो आई थिंक यू विल लाइक दिस वन. तब तक के लिए आप ये एंजॉय करिए.

एंड गाइस वी आर बैक. गाना बड़ी जल्दी खत्म हो गया. आगे बढ़ते हैं. तो गाइस ब्रेक में जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स. ठीक है, वी विल टॉक मोर अबाउट दोज आफ्टर 9 o'clock. लेकिन उसके पहले गिव अवे भी है मेरे पास, और उस गिव अवे का वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द बॉलीवुड ट्रिविया क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास 3 गिव अवे हैं और इतने सारे बॉलीवुड कॉपी आई डोंट थिंक हैं. तो इसीलिए यू हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू मिनट्स एंड देन आई विल प्ले यू द क्वेश्चन. इट्स नॉट आई वॉन्ट रियली प्ले यू द क्वेश्चन, आई विल टेल यू वॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द गिव अवे इज. कीप लिसनिंग. तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए.

0: आर बैक। तो बिफोर वी गो इन टू द ब्रेक, क्योंकि 9 बजे ब्रेक शुरू होने वाला है, उसके पहले एक गेम खेलते हैं। ये गेम थोड़ा सा अलग है। दिस इज फॉर द गिव अवे, फॉर लेट मी टेल यू आप क्या जीत सकते हैं इस गिव अवे में। आप जीत सकते हैं इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ वाले लोकेशन से एक हैम्पर। तो क्या है इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर देसी एसेंशियल्स। इंडिया बाजार लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ। सो फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलाहर्स्ट एंड हैसलेट। अगर आप वहां से नहीं भी हैं, देन ऑल्सो यू कैन विन दिस गिव अवे। इट डजेंट मैटर, यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो पिक इट अप। तो लेट्स डू दिस। तो एक डायलॉग मैं बोलूंगी, दिस इज मी ट्राइंग टू टेस्ट योर बॉलीवुड नॉलेज। ओके, मैं एक डायलॉग बोलूंगी फ्रॉम वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट मूवीज। ओके, कौन सी मूवी है? मूवी का नाम है अंदाज अपना अपना। आपने देखी होगी, आमिर खान, सलमान खान, एंड वी आर ऑलरेडी गेटिंग कॉल्स। भाई आधा डायलॉग तो मैंने बोला नहीं, पर मैं बोलने तो दो आधा डायलॉग, देना आपको कंप्लीट करना है उस डायलॉग को। और करिश्मा कपूर एंड रवीना टंडन एंड ऑफ कोर्स परेश रावल, सच अ स्टार कैरेक्टर, सच अ स्टार कैरेक्टर लाइन अप, यू नो। तो डायलॉग आधा मैं बोलूंगी, आधा आपको कंप्लीट करके मुझे बोलना है। ओके, तो हियर वी गो। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें एंड कंप्लीट द डायलॉग। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें। एंड हियर वी गो, वी हैव आवर फर्स्ट
1: गोगो
0: कॉलर।
1: नाम है
0: हाय, कैन यू
1: मेरा,
0: हियर मी?
1: आंखें एंड कंप्लीट द डायलॉग। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें एंड हियर वी गो, वी हैव
0: कैन यू पुट द
1: गोगो
0: रेडियो
1: नाम है
0: ऑफ इन द
1: मेरा।
0: बैकग्राउंड? हाय, कैन यू हियर मी? या
1: या कैन यू हियर मी नाउ?
0: यस। तो पहले आप अपना नाम बताइए, एंड दूसरा, आपने पिछले 1 महीने में कोई गिव अवे जीता कि नहीं? आई बिलीव श्रीकांत, यू वन अ गिव अवे, हैवंट यू?
1: इंडिया बाजार से तो नहीं कीजिए था मैंने अब तक।
0: नहीं, तो आई थिंक वील हैव टू गिव इट टू समवन एल्स फॉर दिस वन, बिकॉज यू वन अ गिव अवे इन द लास्ट वन।
1: ओके ओके, सो यू
0: सो
1: मीन वन वन मंथ,
0: या
1: विद इन 1 month फ्रॉम फाइनेंशिया? ओके ओके ओके,
0: या या बट थैंक यू
1: आई
0: फॉर
1: थॉट इट्स
0: कॉलिंग।
1: ओनली इंडिया बाजार बिकॉज आई हैव नेवर वन इट। ओके ओके,
0: नो वरीज, नो वरीज, बट थैंक यू फॉर
1: नो प्रॉब्लम।
0: कॉलिंग।
1: ओके बाय।
0: ओके गाइस, हाय फनीशा रेडियो, थैंक यू फॉर
1: हेलो,
0: कॉलिंग। पहले तो अपना नाम बताइए, और दूसरा, आपने पिछले 1 महीने में कोई गिव अवे जीता तो नहीं है?
1: नहीं इतनी अपनी अच्छी किस्मत कहाँ है बताइए आप।
0: कोई बात नहीं, आज आपकी किस्मत अच्छी है, लगता है होने वाली है।
1: हाँ
0: तो पहले अपना नाम बताइए।
1: हाँ विनोद, विनोद जैन।
0: विनोद। ओके, विनोद, विनोद जैन जी, आप बताइए, व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन? आधा डायलॉग ये था, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें। अरे
1: आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
8: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
9: इट्स लॉसन।
8: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
9: इट्स लॉसन।
8: डैडी व्हाट इज द लॉ?
10: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स लॉसन ट्रैवल।
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
12: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
13: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
13: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
14: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
17: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।
0: And guys, जाने से पहले we were listening to the giveaways and everything. So congratulations, Vinod Jain ji, you have won the giveaway from India Bazaar in Fort Worth. तब हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन जाने से पहले we were talking about basically from 7 to 8 o'clock we were talking about attachment styles in relationships and dating. We're going to continue that discussion around 9 o'clock. लेकिन उसके पहले मैं ये तो बोल दूँ, you guys are listening to AP the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM and this is my segment, An Evening in Dallas. Yes, we're keeping it hip, we're keeping it fresh and I bring to you the latest scoop that's happening around DFW. So, ये गाना सुनते हैं and then we'll talk some more.

भाई आपका दिल क्या चाहता है? यू गाइज, यू आर लिस्निंग टू इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डैलस। जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट एंग्शियस अटैचमेंट एंड अवॉइडेड अटैचमेंट स्टाइल्स। यू नो, हम रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, डेटिंग स्टाइल में या फिर इवन फ्रेंडशिप्स में दो टाइप के पर्सनालिटीज मेनली होती हैं। या तो यू आर एन अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल या फिर यू आर एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू? अवॉइडेंट वो होते हैं हु फील लाइक दे लाइक टू पुल बैक इन ऑर्डर टू फील सेफ इन अ सिचुएशन, और एंग्शियस अटैचमेंट वो होते हैं जो दे लाइक टू लैच ऑन टू समथिंग सो हार्ड, इतनी टाइटली किसी को पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, बिकॉज मे बी दे आर ट्राइंग टू फिल अ वॉइड ऑन देयर इनसाइड देयर हार्ट। दे आर ट्राइंग टू सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन ईदर थ्रू देयर फ्रेंडशिप्स और थ्रू देयर पार्टनर और एनी वन एल्स फॉर दैट मैटर। सो दे लैच ऑन टू थिंग्स सो टाइटली एंड फील लाइक कि नहीं, यही वो बंदा है या बंदी है जिससे मैं पूरा कंप्लीट हो पाऊंगा। आई सी माई सेल्फ कंप्लीटेड ओनली थ्रू दिस पर्सन, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी कोई है ही नहीं। और कई बार लोग क्या होता है ना, इतने ब्रेकअप्स और इतने सारे रिलेशनशिप में आने के जाने के बाद समटाइम्स पीपल बिकम अ ब्लेंड ऑफ द टू, विच इज काइंड ऑफ रेयर एंड यूजली दैट हैपन्स विद एक्सेसिव ट्रामा। तो आप अवॉइडेंट भी हैं कुछ कुछ सिचुएशंस में, कुछ कुछ सिचुएशंस में आप एंक्शियस अटैचमेंट भी हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या होता है ना, देर इज दिस इन द श्रिंक वर्ल्ड देर इज ए थियोरी दैट एन अवॉइडेंट एंड एन एंक्शियस अटैचमेंट पर्सन, दे आर लाइक मैग्नेट्स, दे फाइंड ईच अदर लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ दीज मैग्नेट्स, और हमेशा दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्योंकि पता क्या होता है, एक अवॉइडेंट जो होता है ही लव्स दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लव, फ्री एनर्जी, वो अपना सेपरेशन हमेशा मेंटेन करना चाहता है, बट ही लव्स, ही और शी दे लव द कनेक्शन फ्रॉम द एंग्शियस अटैचमेंट, क्योंकि उनको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। और एंग्शियस अटैचमेंट जो क्या करते हैं, दे गेट अटैच सो हार्ड टू द अवॉइडेंट कि अवॉइडेंट को लगता है यार मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दूसरा वाला बंदा सारी चीजें ऑलरेडी कर रहा है। नाउ द एंग्शियस पर्सन, दे आर यूजली द गिवर्स इन अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में इतना देते हैं, इतना देते हैं, बिकॉज दे फील लाइक कि नहीं यार, अगर मैं ये नहीं दूंगा, इफ आई डोंट डू एवरी थिंग दैट दिस अदर पर्सन आस्क्स ऑफ मी, देन मे बी दे लीव मी, ओ नो वॉट विल हैपन इफ दे लीव मी, वगैरह वगैरह। एंड सो दे कीप गिविंग अंटिल दे रीच लाइक अ थ्रेश होल्ड, एंड दैट्स वेन थिंग्स फॉल अपार्ट। दैट्स वेन यू आर लाइक, तुम पहले जैसे नहीं हो, पहले तुम इतना रिसीव करते थे एंड यू वुड रेसिप्रोकेट बैक, वगैरह वगैरह। एंड द एंग्शियस अटैचमेंट की नीड्स नहीं मीट हो रही है, वो तो दे रहा है लेकिन उसको रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है अवॉइडेंट से। अवॉइडेंट कहता है कि भाई मैं तो हमेशा से ऐसे ही था, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस पर्सन हु लाइक्स टू कीप अ डिस्टेंस। एंड द एंग्शियस अटैचमेंट पर्सन इज लाइक, बट आई ऑल्सो नीडेड बैक। तो अवॉइडेंट कहता है भाई मैंने तो तुम्हें कभी प्रॉमिस नहीं किया था मैं तुम्हें ये देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, वगैरह वगैरह। तो इट्स लाइक दिस कॉन्स्टेंट बैटल एंड कॉन्स्टेंट फाइट बिटवीन द एंग्शियस एंड अवॉइडेंट। एंड अगर आप किसी भी रिलेशनशिप, मैरिज या किसी भी टाइप के इस तरह से इक्वेशन में हैं, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रेजोनेट विद दिस थिंग। या तो यू आर द गिवर एंड योर पार्टनर इज द टेकर, या फिर योर पार्टनर इज द गिवर एंड यू आर द टेकर, और यू हैव, मे बी यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर, मे बी यू आर नॉट इन दैट डायनामिक एनी मोर, बट वी हैव ऑल डेल्ट विथ अ सिचुएशन लाइक दैट। सो हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? दिस साइकिल यूजली विल गो ऑन फॉर 5-7 months अंटिल इट एक्चुअली क्रैक्स, एंड देन यू नो देन ऑल द ड्रामा एंड द ट्रामा दैट कम्स अप। तो आगे बात करते हैं, पहले ये गाना सुनते हैं।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
3: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi.
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी.

Guys, you are listening to me, Ipi Dhalpi, on One Asia, Fun Asia 104.9 FM. भाई मैं थक गई हूँ. फन एशिया की जगह वन एशिया बोल दिया मैंने गलती से, क्योंकि भाई रात के 10 बजने वाले हैं. इट इज़ 9:43 ऑन द क्लॉक और मैं सुबह 8:30 बजे से घर से निकली हुई हूँ. फिर मैंने सारे दिन कैंप्स कराए, प्राइवेट लेसन्स करा के सीधा मैं फन एशिया के ऑफिस में आई. लेकिन गाइज मुझे यहाँ आना था बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव ऑल माई लिसनर्स. थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड विथ मी एंड लिसनिंग टू माई शो. I bring some amazing stories and amazing concepts and discussions and of course lots of amazing music जो आपने शायद सुने हैं, नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए. तो आज हम बातें कर रहे थे अटैचमेंट स्टाइल्स की. अटैचमेंट स्टाइल्स का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाने से पहले आई जस्ट केम अक्रॉस दिस वन सेइंग एंड आई थॉट दिस मेक्स कंप्लीट सेंस. पता क्या है, द सेइंग इज, this is totally related to the attachment styles, by the way, kyunki we talk about love relationships dating over here on the show. It says marriage, okay, I'm sure a lot of my listeners here are married or just newly married or have been in their marriages for a really long time. It doesn't matter, it's for you guys if you're married. Marriage is not an emotional negotiation or a daily compromise. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पेरेंट्स के जेनरेशन, अंकल आंटी कहते हैं बेटा मैरिज अगर आपको मेंटेन करके चलनी है थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. भाई कॉम्प्रोमाइज इज नॉट द राइट वर्ड, आई डोंट थिंक सो. क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है पता है, आप अपनी डिजायर्स को मारते हो जस्ट बिकॉज यू कैन यू नो सिक्योर एंड अपहोल्ड दैट सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें आपने साइन इन कर लिया है, एज इफ यू नो उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा. वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, हमारे अंकल आंटी की जनरेशन है कि भाई डिवोर्स वाज नेवर एन ऑप्शन, वॉकिंग आउट वाज नेवर एन ऑप्शन. लेकिन आजकल के बच्चे, हमारी जनरेशन जो है, वी आर नॉट अफ्रेड टू रीस्टार्ट आवर लाइव्स अगेन. क्योंकि हमें पता है भाई कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन हम दोबारा ढूंढ लेते हैं. सो वी डोंट लाइक टू यूज द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, बट हाउएवर That does not mean it's very easy to walk out of a marriage. I'm not saying that. Please, meri baaton ka galat matlab mat nikaliye. So this saying, the full saying is, marriage is not an emotional negotiation or a daily compromise. It is a cold, high-performing corporate partnership. I don't know about corporate, but it's definitely a partnership. It is a cold, high-performing partnership where both people protect the exact same mission. Marriage is not about one person sacrificing themselves while the other person gets to do everything they want. Compromise is not the right word. Marriage is where you are both on the same team and you are both on the same side and you're maintaining that goal. Both people have to meet in the middle. Aisa nahi hai ki ek banda jo bhi apni banda bande jo bhi hai, I mean it doesn't matter. I'm not talking about the guy or the girl in this case. It doesn't matter. You both are on the same page and you both have to carry the equal amount of load and the equal amount of burden or the equal amount of shared responsibilities to make a marriage or a partnership or a relationship work. That is what I have to say and I absolutely agree with it. Okay, so I came across that. It's not my original saying, lekin I do agree with it, right? तो आप ये गाना सुनिए, देन वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर.

बातों में, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बातें सिर्फ आपके लिए ही करती हूँ, आपको मजेदार मजेदार स्टोरी सुनाती हूँ। कल हम बातें कंटिन्यू करेंगे अबाउट रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग एंड सम स्पेशल डेडिकेशंस इफ यू हैव एनी। तो कॉल मी एट 972-235-5555, लेकिन आज नहीं, आज के लिए बस इतना ही। यू आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फन एजा रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम एन इवनिंग इन डैलस। और आप यूं ही चलते रहिए क्योंकि जिंदगी हमारी ऐसी चलती रहती है ना। चलो।

हेलो डैलिस, क्या हाल है? मंडे ऑफिशियली सर्वाइव कर लिया है और ऑनेस्टली ये भी एक अचीवमेंट होती है। वेलकम टू दिल से डैलिस विद स्निग्धा, ओनली ऑन फनीशा 104.9 FM पर। आज की रात थोड़ी स्पेशल है बिकॉज मंडे का दिन वैसा भी थोड़ा ड्रामेटिक होता है ना? आई होप एवरीबडी अग्रीज विद दिस। सुबह अलार्म बजता है और पहला थॉट होता है, वीकेंड इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? सैटरडे मॉर्निंग को लगता है टाइम स्लो है, संडे आफ्टरनून को लगता है बस थोड़ा और टाइम मिल जाए, और संडे नाइट को सडनली कैलेंडर याद दिलाता है हमें कल मंडे है। तो आज हम इसी हमारे मंडे मूड की बातें करते रहेंगे। लेट मी स्टार्ट माई शो विद आवर फर्स्ट सॉन्ग टुडे एंड लेट मी मेक योर मंडे अ लिटिल चीयर्ड अप।

सो हम बात कर रहे थे अबाउट मंडे, और फिर एक फेमस लाइन होता है मंडे की, बताओ क्या है? कल से सब ऑर्गेनाइज करूंगा, कल से हेल्दी खाऊंगा, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, कल से जल्दी सो जाऊंगा। और फिर मंडे आता है और हमें बोलता है, ठीक है नेक्स्ट मंडे से पक्का कर लेना। बिकॉज वी टेल इट टू आर सेल्फ, मंडे नहीं बोलते पर हम खुद को ऐसे ही बोल देते हैं। हम सबकी लाइफ में एक इमेजिनरी मंडे होता है जहाँ हम परफेक्ट वर्जन बनने वाले होते हैं। लेकिन सच बताओ तो मंडे इतना भी बुरा नहीं है। मंडे एक रीसेट बटन जैसा है, एक फ्रेश स्टार्ट, नए प्लान्स बनाने का एक दिन होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि मंडे को हम एक्साइटमेंट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखते हैं। ऑफिस के ईमेल्स, स्कूल स्केड्यूल्स, मीटिंग्स, ट्रैफिक, सब एक साथ अटैक कर लेते हैं। लेकिन अब रात के 10 बज चुके, जो होना था हो गया। अब लैपटॉप साइड में, काम साइड में, और थोड़ा टाइम अपने लिए। आप अच्छे अच्छे गाने सुनिए हमारे फनीशिया 104.9 FM पर।

So that was a beautiful song called Mascara from the movie Main Vaapas Aaunga, starring Vedang Rana and Sharvari. So हम बात कर रहे थे हमारे मंडे चीजों के बारे में, लाइक मंडे मोटिवेशन, मंडे डीमोटिवेशन. अच्छा, एक चीज नोटिस किया है, मंडे के दिन सब थोड़ा डिफरेंट वर्जन बन जाता है. संडे को हम अपनी लाइफ का पूरा प्लान बना लेते हैं. कल सुबह 6 बजे उठूंगा, ब्रेकफास्ट हेल्दी होगा, ऑफिस जाने से पहले थोड़ा वर्कआउट भी करूंगा, और फिर मंडे मॉर्निंग अलार्म बजती है. हम अलार्म को देखते, अलार्म हमें देखती है, और दोनों के बीच में एक इमोशनल बैटल होता है. फिर हम एक डेंजरस डिसीजन लेते हैं, बस 5 मिनट और. आरंट यू लाइक, आई नो लॉट ऑफ यू पीपल माइट बी थिंकिंग लाइक ये तो सच है, बिकॉज आई नो हाफ ऑफ अस डू दिस, बिकॉज मैं तो हमेशा करती हूँ. पर किसका 5 मिनट का अलार्म लाइक 30 मिनट्स हो गया, मुझे बताइए. कॉल करके हमारे स्टूडियो पर. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर आर वन ऑफ आर लिसनर्स, इट्स कबीरा फ्रॉम ये जवानी है दीवानी.

That was a feel good hey Kabira. So हम बात कर रहे थे हमारे अलार्म की जो 5 मिनट स्नूज पर होता है और वो मैजिकली 30 मिनट बन जाता है. फिर जो रेस स्टार्ट होती है ना, टॉवल एक साइड, कॉफी एक साइड, बैग एक साइड, और हम खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ऑन टाइम हूँ. मंडे का और एक फनी पार्ट है मीटिंग्स. कभी कभी एक मीटिंग के बाद लगता है कि मीटिंग में डिसाइड क्या हुआ, ये डिसाइड करने के लिए तो और भी मीटिंग चाहिए. और ईमेल्स का तो क्या ही कहना, इनबॉक्स मंडे मॉर्निंग को ऐसे ओपन होता है जैसे किसी ने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी हो. बस बलून्स की जगह अनरीड मैसेजेस होते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिलेटेड टू दिस? गाइज लॉट ऑफ यू गाइज हु आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज मस्ट बी फॉर श्योर रिलेटिंग टू दिस. सो फॉर यू गाइज द नेक्स्ट सॉन्ग इज हियर.

0: प्याली चाय पकड़ा दूं, झट से मान जाए सैया।
1: That was Chai Chai for all our chai lovers and our special listeners, Safi ke liye tha. And hum baat kar rahe the Mondays. To mujhe pata hai, I was thinking like, yaar Monday ko itna to, we should not feel like, yaar Monday kitna bekaar hai. Monday ke liye na, chhoti chhoti victories bhi hoti hai. Like, jaise traffic kam mil gaya, parking easy mil gayi, coffee perfect bani, ya koi kaam postpone कर रहा था वो फाइनली कंप्लीट हो गया. समटाइम्स मंडेज इवन ब्रिंग अस गुड लक गाइज. सो वन मोर सॉन्ग फॉर यू गाइज बिफोर वी किक इन आवर ब्रेक.

You're listening to Dil Se Dallas with Snigdha on Fun Asia 104.9 FM पर. अच्छा, मंडे नाइट एक इंटरेस्टिंग फिनोमेन होती है. पूरा दिन हम बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, दिमाग सडनली प्लानिंग डिपार्टमेंट बन जाता है. सडनली हम डिसाइड करते हैं, और कभी कभी तो मिडनाइट के आसपास अपनी पूरी लाइफ का 5 ईयर प्लान बना लेते हैं. लेकिन फनी बात ये है, अगला दिन सुबह अलार्म जब बजता है ना, वो मोटिवेशन थोड़ा मिसिंग होता है. शायद रात का एनवायरनमेंट ऐसी होती है, जब दुनिया थोड़ी क्वाइट होती है तो हमें अपना थॉट सुनाई देते हैं. और ऑनेस्टली कभी कभी वो छोटी प्लानिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ एकदम परफेक्ट टाइमिंग से नहीं होती है. कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन भी काफ़ी होता है, जैसे कल से 10 मिनट वॉक, कल से एक हेल्दी हैबिट, कल से थोड़ा ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ. बिकॉज दैट्स व्हाट वी मिस इन यूएस. मंडे टू फ्राइडे हमें सिर्फ काम करना होता है. बस 2 दिन बचते हैं, 2 दिन में हमारे घर की मम्मियाँ एंड ऑल द वर्किंग वुमेन हैव टू डू घर का समेटने के काम. सो टेकिंग अ स्मॉल चेंजेस इज ऑल्सो मेक्स अ गुड डिफरेंस. सो व्हेन इट मेक्स अ गुड डिफरेंस, वो बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, लेना चाहिए और करना चाहिए.

सो इट्स 10:42 PM, अभी रात बाकी है, म्यूजिक भी बाकी है और हमारी मंडे नाइट रिसर्च जर्नी भी बाकी है. चलिए एक और गाने के साथ मूड को और बेटर करते हैं, क्योंकि हमारे बातें चलने वाले हैं 12 बजे तक, क्योंकि मेरी शो चलने वाली है 12 बजे तक. सो नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइज, हु एवर इज स्टिल लिसनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग. और आपकी कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो कॉल कीजिए हमें स्टूडियो पर 9722355555 पर.

That was Kesariya from the movie Brahmastra. Who doesn't like Brahmastra? Such a wonderful movie, right? So welcome back to Tilsa Dallas with Snigdha on Phanisha 104.9 FM पर मंडे नाइट का मूड अब थोड़ा सेटल हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे मंडे के बातें कर ली होगी. दिन भर तो आपने हासिल कर ही लिया, काम का प्रेशर ले लिया, रनिंग अराउंड सब थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं और अब बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ों की जो ऑनेस्टली हमें पूरा दिन बेटर फील कराता है. यू नो वी ऑलवेज सेइंग लाइक वी नीड टू डू समथिंग बिग टू ऑलवेज फील हैप्पी. इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज डू समथिंग बिग एंड देन बी हैप्पी. देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी एंड कीप अस अलाइव एंड गोइंग एवरी डे. सो हम नेक्स्ट सेगमेंट में यही बात करने वाले, छोटी छोटी खुशियाँ जो हम सोचते हैं कि इसमें क्या है बट इट डेफिनेटली ब्रिंग स्माइल विद अस. यही बातें चलेंगे आफ्टर द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइज़.

फॉर ऑल माई कॉफी एंड चाय लवर्स, या फिर पार्किंग लॉट में, लाइक अ बिजी पार्किंग लॉट, एंट्रेंस के पास ही एक स्पॉट मिल जाता है. सीरियसली टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फर्स्ट सी लाइक द फर्स्ट पार्किंग स्पॉट टू गो एंड लाइक पुट योर कार देयर? अगर वहाँ पे कुछ कोई हो तो लगता है शिट यार कभी नहीं मिलती, बट जब मिल जाती है एक छोटी लॉटरी जीतने जैसे फील होता है. एस्पेशली ग्रॉसरी स्टोर के बिजी टाइम पे आप डोर के एक एम्प्टी स्पॉट देखते हो और अंदर से एक एक्साइटमेंट आती है जैसे कोई चैम्पियनशिप जीतने वाले हो. फिर कोई दूसरी कार भी उस स्पॉट की तरफ आया तो वो 5 सेकेंड साइलेंट कंपटीशन वाली असली पर्सनालिटी टेस्ट होती है. एक और छोटी खुशी जब आप घर आओ और घर क्लीन हो. कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन जो क्लीनिंग पोस्टपोन करते रहते हैं उनके लिए क्लीन रूम एक लग्जरी रिसॉर्ट जैसा फील होता है. बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड जिसको हमेशा सब साफ चाहिए, इवन मी, बट मैं उसकी जितनी OCD तो मुझे नहीं है, बट दिस वन वॉज फॉर ऑल द OCD पीपल जिनको सब साफ रहना चाहिए इवन दो यू आर वर्किंग मंडे टू फ्राइडे. एक सॉन्ग फॉर यू गाइज.

हम बात कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी मूड को बेटर बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ वर्किंग डे अगर सुबह परफेक्ट टेम्परेचर वाली चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए, आपने बस एक सिप ले लिया और अंदर से फीलिंग आए, ओके, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है. दिस वन वॉज

ऑफिशियली वीकेंड मोड पे चले गए क्या? डू नॉट, इट्स मंडे एंड इट्स ऑलमोस्ट 11 PM, 11:05 एट द क्लॉक. सो हम बात कर रहे थे छोटी छोटी थिंग्स विच मेक्स आवर मूड बेटर एंड कीप्स अस हैप्पी. बस एक अच्छा सॉन्ग, एक टेस्टी मील, एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट या किसी अपने का सिंपल सा कैसा था दिन पूछ लेना. लाइफ के बड़े मोमेंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें डेली लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है. तो आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे वही स्मॉल विन्स जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. चलिए म्यूजिक के साथ और कंटिन्यू करते हैं. आई एम नॉट गोना लेट यू स्लीप अंटिल 12 AM बिकॉज आई एम इन द स्टूडियो एंड आई एम गोना एंटरटेन यू. आप ना सोए 12 बजे तक और हमारे गाने सुनते रहिए.

वेलकम बैक डैलस। अच्छा, मुझे कभी कभी एक छोटी सी चीज़ पूरा मूड चेंज कर देती है ना। लाइक ऑलवेज, इफ़ यू यू डोंट हैव टू ऑलवेज योर मूड चेंज ओनली ऑन अ बिगर थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे मूड को अच्छा बनाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप रेडियो सुन रहे हैं, योर फेवरेट सॉन्ग रेडियो पे आ गया, और वो भी एग्जैक्टली उस टाइम पे जब आप ड्राइव कर रहे हो। बस फिर क्या, स्टीयरिंग व्हील हाथ में, वॉल्यूम थोड़ा हाई, और अंदर से कॉन्सर्ट शुरू। और फनी पार्ट ये है कि कार में हम सब सिंगर बन जाते हैं। यू नो व्हाट, एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ अस, आई डोंट नो अबाउट अदर्स जो गाते नहीं हैं, मैं तो खोल खोल के गाती हूँ। इफ़ आई एम अलोन, घर पे कोई बोले गाना सुनाओ तो हम शाय हो जाते हैं। लेकिन कार के अंदर ग्रैमी परफॉर्मेंस, लिरिक्स आते या नहीं, कॉन्फिडेंस तो फुल होती है। इट्स लाइक इट्स गुड व्हेन यू कैन सिंग आउट योर सेल्फ एंड व्हेन यू आर वाइबिंग योर सेल्फ, वो हमेशा अच्छी चीज़ होती है। एंड ये काम करता है रेडियो, इसीलिए सुनते रहिए फन एशिया 104.9 FM। लेट मी प्ले अ नाइस मेलोडी, सूथिंग स्लो प्यार वाला गाना।

सो हम बात कर रहे थे अबाउट मंडेज एंड अबाउट अ स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच मेक्स आर लाइफ अ लिटिल डिफरेंस. एक और स्मॉल हैप्पीनेस लाइक छोटी चीज़ के लिए मैं बताऊँ, जब कोई पुराना फ्रेंड रैंडमली मैसेज करता है ना, इट इज़ एन अलग लेवल की हैबी. हम ऑटोमेटिकली स्माइल कर लेते हैं बिकॉज आजकल सब अपनी लाइफ में इतने ऑक्यूपाइड है कि एक सिंपल से हे हाय हाउ आर यू भी काफ़ी सिंपल लगता है एंड स्पेशल भी लगता है. या फिर जब आप कोई पेंडिंग काम फाइनली कंप्लीट कर देते हो ना, वो फीलिंग अलग ही होती है. अपने एक कबर्ड ऑर्गेनाइज किया, एक डॉक्यूमेंट फिनिश किया, या बस वो ड्रॉअर जो कभी क्लीन नहीं है वो क्लीन कर दिया, महीनों से आप जो इग्नोर कर रहे थे, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आती है, येस आई हैव माई लाइफ टुगेदर. चाहे रियलिटी में 10 चीज़ पेंडिंग ना क्यों ना हो, बट इवन मेकिंग स्मॉल थिंग्स एंड डूइंग स्मॉल थिंग्स एंड मेकिंग इट अ डिफरेंस इज़ अ बिग थिंग. सो दैट इज good and keep it always going on. Next song for you.

यू नो व्हाट, हमारी प्रॉब्लम ना ये है कि हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में सर्च करते हैं, जब ये होगा मैं तब खुश होऊंगा, लेकिन कभी कभी हैप्पीनेस ऑलरेडी आसपास होती है ब्रो, बस थोड़ा नोटिस करना पड़ता है। तो आज रात का रिमाइंडर सिंपल है, लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स को इग्नोर मत कीजिए और उसमें जीते रहिए। चलिए एक और सॉन्ग के साथ मूड और बेटर बनाते हैं, एंड आफ्टर दिस वी गोना गो इनटू अ स्मॉल ब्रेक। सो नेक्स्ट सॉन्ग इज़ फॉर यू गाइस फ्रॉम काफिराना स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत, आई नो वी मिस हिम, एंड सारा अली खान फ्रॉम मूवी केदारनाथ।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Ek baar jo maine commitment kar di
2: to phir sirf Panacea hi sununga
3: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Panacea Radio

You're listening to Dil Se Dallas with Snigdha on Phanisha 104.9 FM पर. So हम बात कर रहे थे उन चीज़ों को जो makes us happy. So और एक interesting चीज़ discuss करना था, वो moment जो सिर्फ देसी families समझ सकती है, क्योंकि छोटी खुशियाँ की connection culture से भी होती है. जैसे घर में किसी ने बोला आज dinner में तुम्हारा favorite dish बनी है, बस mood automatically better. चाहे दिन कितना भी स्ट्रेसफुल रहा हो. और देसी घरों में खाना सिर्फ खाना नहीं होता, इट इज़ अ सेल, इट्स लाइक अ केयर यू शो टू द पर्सन यू लव. किसी का पूछना खाना खा लिया कभी कभी एक कंप्लीट कॉन्वर्जेशन होती है. स्पेशली जहाँ हम यहाँ US में बिजी स्केड्यूल्स के साथ लाइफ मैनेज कर रहे होते हैं, कभी कभी एक फेमिलियर स्मेल, एक फेवरेट डिश या कोई ओल्ड सॉन्ग हमें इंस्टेंटली कंफर्टेबल कर देती है. दिस इज आर फनी देसी हैप्पीनेस विच कीप्स अस ऑलवेज गोइंग, क्योंकि हमारे घर में तो चलता ही रहता है और खाना इज आर मेन प्रायोरिटी. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइज एंड द शो इज टिल 12 AM. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ऑल आर लिसनर्स. हुएवर आर स्टिल ड्राइविंग, गो होम सेफली. अगला गाना आपके लिए.

this song can never get old. Samjhawa, what a beautiful song it was. Welcome back to Dil Se Dallas with Snigdha on Phoenicia 104.9 FM. Time ho chuka hai 11:44, almost 11:45. Aur ab wo zone start hota hai jahan duniya thodi quiet ho jati hai, lekin hamara dimag suddenly full speed pe aa jata hai. Din bhar hum busy rehte hai. Emails, meetings, school pickups, grocery, cooking, to-do list kitna lamba hota hai yaar. Lekin jaise hi bed pe lete hai, brain bolta hai, chalo ab important baat karte hai. खुद के साथ और वो रैंडम थॉट शुरू. कभी सडनली याद आता है कि 10 साल पहले किसी ने क्या बोला था. कभी सोचते हैं अगर मैं उस टाइम में वो डिसीजन ना लेता तो लाइफ कैसी होती. कभी फ्यूचर के प्लान्स बनाने लगते हैं और सबसे फनी पार्ट, रात को जब 11 बजे के बाद होती है हम अपनी लाइफ का कंप्लीट मेकओवर प्लान कर देते हैं. कल से एवरीथिंग इज गोना रीसेट और सब चीज़ें बदलेंगे. आई एम नॉट गोना बी द सेम As usual, सबका कहानी हंसी तो आई ना, एंड यू कुड रिलेट एटलीस्ट थोड़ा ऑफ इट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा ही रिलेट कर लो, पर थोड़ा कहीं ना कहीं आप करते हो. एवरीबडी ऑफ अस, जैसे ही रात होती है हमारे थॉट्स शुरू होते हैं. बिकॉज हम US में हैं, थॉट्स और भी ज़्यादा शुरू होते हैं. वन मोर स्लो नाइस सॉन्ग फॉर यू गाइज फ्राम द मूवी धड़क, स्टारिंग ईशान एंड जानवी.

चलो सोने का टाइम तो हो रहा है, बट हमारी बातें चल रही थी कि रात के थॉट्स का। ऑनेस्टली मुझे रात का थॉट्स का ना अपना चार्म होता है लगता है, शायद क्योंकि दिन में हमें इतने बिजी होते कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। रात का साइलेंस हमें थोड़ा तो स्पेस दे देती है, और कभी कभी रैंडम थॉट्स हमें नए आइडियाज़ भी देते हैं। कभी कोई क्रिएटिव आइडिया, कभी कोई प्लान, कभी कोई मेमोरी, बस प्रॉब्लम।

स्पेस दे देती है, और कभी कभी रैंडम थॉट्स हमें नए आइडियाज़ भी देते हैं, कभी कोई क्रिएटिव आइडिया, कभी कोई प्लान, कभी कोई मेमोरी। बस प्रॉब्लम तब होती है जब हम 2 बजे भी बस अपना रील स्क्रोल करते जा रहे और एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। आज रात हम ये वाले आदतें छोड़ के वी विल नॉट स्क्रोल आर फोन्स, बट वी विल थिंक फॉर आर सेल्व्स। दैट इज़ माई एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, अपने फोन्स रखो, क्योंकि आप सुबह से बहुत स्क्रीन देख चुके हैं, इतना स्क्रीन आपके आँखों के लिए अच्छा नहीं है। सो टेक माई एडवाइस एंड स्टॉप स्क्रोलिंग योर फोन्स ड्यूरिंग द नाइट वेन यू आर गोना स्लीप। नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइज।

0: हाँ, वो मंडे वाली एनर्जी आप ट्यूसडे के लिए ट्रांसफर नहीं करनी है। जाने से पहले एक छोटा सा चैलेंज दे दूं मैं आपको। कल सुबह उठकर पहला थॉट ये नहीं होना चाहिए कि ओ नो, अनदर बिजी डे, अनदर वीक डे। ट्राई कीजिए कि व्हाट गुड थिंग टुडे ब्रिंग्स इन टू मी। कभी कभी सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करने से मूड भी चेंज होता है जी। और जाने से पहले एक बात, लाइफ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उसको एंजॉय करना मत भूलना, क्योंकि बेस्ट मेमोरीज अक्सर प्लान के साथ नहीं होती, वो रैंडम मोमेंट्स में भी होते हैं। लाइक एक फनी कन्वर्सेशन, एक अनएक्सपेक्टेड सा स्माइल, एक फेवरेट सॉन्ग एट द राइट टाइम। इसी के साथ आज की दिल से डैलस विद स्निग्धा की जर्नी यही कंप्लीट करते हैं। मैं स्निग्धा मिलूंगी फिर एक नई रात, नए टॉपिक्स और नए कॉन्वर्जेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉयिंग द लिटिल मोमेंट्स, गुड नाइट डैलस, और ऑलवेज लिसन टू फन एशिया 104.9 FM। सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम, 10 PM टू 12 AM। एंड हियर इज माई लास्ट सॉन्ग फॉर यू गाइस, एंड इट्स नॉट अ बोरिंग वाला सॉन्ग। कुछ ज़्यादा ही स्लो सॉन्ग हो गए तो थोड़ा लाइक बीट वाला सॉन्ग, एंड देन लेटर ऑन गुड नाइट गाइज।
1: आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं उसकी शादी हो रही है।

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग जस्ट लाइक मनी।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
5: Hi, this is Saleem Merchant from Saleem Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।
1: परदेसियां है तेरे प्यार में जब से,

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: 93.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: सर, लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा, वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: एक बेटा बच गया साया।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
4: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: Happy music, happy people. Only on Fun Asia Radio.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम। फिर ऐसा क्यों लगता है, जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

0: has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye million dollar property bhi.
1: Hi, this is Hussain Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
2: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
3: Hire Moti,
4: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
6: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
7: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
10: इट्स लॉसन।
9: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
10: इट्स लॉसन।
9: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
11: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
12: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
14: Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome to the show this morning. It's Tuesday, the 7th of July. सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्राम।

0: 80s now and 90s later, probably even reaching 99 today. Few lucky ones who saw some rain and maybe the same between 3 and 9 this afternoon.
1: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
2: हाँ, देख लेंगे।
1: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
2: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
3: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
4: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
5: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
4: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
16: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
17: Don ko pakadna mushkil hi nahi. Na mumkin.
18: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
19: Tarikh par tarikh.
20: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
18: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
21: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi इंडिया में करें?
22: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
21: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
21: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
20: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route. Rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
6: इट्स लॉसन.
5: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
6: इट्स लॉसन.
5: डैडी व्हाट इज द लॉ?
7: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 2146312458. द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल.
8: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
9: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
8: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
11: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
12: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
13: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
12: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
14: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: Included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
1: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
2: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
1: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
0: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
3: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल info@seemamehtalawfirm.com.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.

0: That track, ladies and gentlemen, from the movie Sing Is King, picturized on Akshay Kumar and Katrina Kaif. And the first one to give me the right answer was Amit Jain. And Amit will be getting either a dal makhani or a dhaba style chicken curry at the Flavor Lounge. And that restaurant is located on Preston Road in Frisco. And do remember, Amit, that this is only valid for dine-in. You cannot take it out. Okay, we have another giveaway, but we'll get that to you a little bit later in this hour of the program. But promise, before I leave the studios, we'll have it for you. And actually, that one will have two winners. All that coming up for you. Stay with us right here.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hello Texas Parivar, kya aapko pata hai, there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coasted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
7: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.senadainc.com today.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

0: Ladies and gentlemen, that's my show for today. I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you every morning from 7 to 10. Me Too's coming on right after me, and you'll continue listening to the Fun Asia Network. It's 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
13: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
14: Excuse me. It's called being loyal.
13: It's called being predictable.
14: Okay then, let me surprise you.

0: Hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.
6: नहीं सीरियसली यार, स्वैग से ही स्वागत करेंगे विशाल और शेखर का इन डैलस. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कल्विल सेंटर इन गार्लैंड और cashpatelproductions.com पे जाकर आप अपने टिकट्स खरीद सकते हैं. और अगर 30% का बिल्कुल डिस्काउंट चाहिए आपको तो फन एशिया कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें. मर्जी आपकी, अगर 30% डिस्काउंट चाहिए तो फन एशिया का नाम आपके दिमाग में गूंजते रहना चाहिए व्हेन यू आर ऑन द वेबसाइट cashpatelproductions.com. बाकी रही बात आप लोगों के लिए जो गाने हम विशाल शेखर के लेकर आएंगे वो भी इट इज इन दिस शो विच इज कॉल्ड गपशप गली विथ मी टू. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन लेडीज एंड जेंटलमैन. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि आपके पसंद के गाने प्ले हो सकते हैं अगर आप मुझ तक पहुंचते हैं. 9722355555 स्टूडियो का नंबर.

You are tuned into Foundation Radio 104.9 FM. ये है गपशप गली with me too. आज ना सुबह सवेरे थोड़ा सा मूड खराब हो गया और इसीलिए पंचतारा तो जाना ही पड़ेगा. I'll tell you why. Well, nothing ruins a Friday like realizing it's actually only Tuesday. इस realization को मिटाने के लिए, इस realization को actually मतलब digest करने के लिए पंचतारा restaurant तो भाई जाना ही पड़ेगा. आज मन को थोड़ा चंगा करना ही पड़ेगा. फ्री आलू कुलचे और छोले भटूरे का जो हमने आपके लिए एक एक स्पेल लेकर आए थे, वो आज तो नहीं है आपके लिए, लेकिन डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि आलू कुलचे या छोले भटूरे आप स्टिल जाके पंचतारा रेस्टोरेंट में जाके इंजॉय कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर यू फॉलो पंचतारा रेस्टोरेंट इंस्टा हैंडल एंड यू विल बी फाइन, बिकॉज वहाँ पे उनके जो सारे जो स्पेशल्स है, डेली स्पेशल्स है, देयर एलन और फ्रिस्को लोकेशन दैट यू कैन गेट मोस्ट सर्टनली. पंचतारा रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट रिमेंबर दैट. यू आर ट्यून इन टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

टू कम्प्लीट दिस जॉनर ऑफ म्यूजिक, एक और गाना जो लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि गपशप गली विथ मी टू है, हमारी गपशप भी चालू रहेगी और अच्छे अच्छे गानों की सुनने की जो आदत है हमारे वो भी जारी रहेगा। आफ्टर ऑल यू आर ट्यून्ड इनटू फनीशा रेडियो।

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
1: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
0: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
4: आई एम सो स्ट्रेस्ड, क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
5: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
4: क्या मतलब?
5: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
4: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, उमर ख्वाजा।
0: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com। द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप। डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट। Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
9: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
0: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
10: कितने आदमी थे?
11: सर का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
12: अगर पूरा का पूरा डैलस सुनता है फनीशिया रेडियो 104.9 FM तो यकीनन सबको पता है कि आज की तारीख है 7th of July और इस वक्त मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए एक खास सेगमेंट विच इज़ टू डू विथ दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री। तो हम बात करने वाले कुछ ऐसी फिल्म्स की जो इसी टाइम फ्रेम में रिलीज हुई हैं, तो इसी के चलते लेट्स गेट यू दिस फर्स्ट सॉन्ग इन द सेगमेंट। और ये फिल्म है मॉम। जी हाँ, श्रीदेवी इज मॉम, जो कि उनकी 300th फिल्म थी एंड इट कोइंसाइडेड एग्जैक्टली विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ हर वेरी फर्स्ट फिल्म एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, जो 1967 में आई थी, एक तमिल फिल्म जिसमें उन्होंने काम किया था। एंड मॉम के लिए उनकी डेडिकेशन इतनी कमाल की थी, वी हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट दैट। जस्ट रीकैप हियर, रिमेम्बरिंग लेजेंडरी एक्टर श्रीदेवी हियर, कि उनकी डेडिकेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने तब बोनी कपूर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, शी क्रिएटेड अ बाउंड्री, शी डिड नॉट स्लीप, यू नो, स्लीप इन द सेम रूम एज हिम, जस्ट टू फोकस, यू नो, कीप हर माइंड टोटली फोकस्ड ऑन द फिल्म। एंड दैट्स मॉम, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि रवि उद्यावर ने डायरेक्ट की थी। एंड इसमें of course we had Sridevi in the lead character along with सजल अली जो कि पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी सी हीरोइन जिन्होंने उनके डॉटर का काम किया था, ए वेरी हार्ट वार्मिंग फिल्म दैट इट वाज, ए वेरी इंटेंस इमोशनल फिल्म दैट इट वाज, और एआर रहमान का म्यूजिक होना इस फिल्म के लिए, दैट आल्सो द क्रेडिट गोज टू श्रीदेवी बिकॉज ही इज़ एन एक्सपेंसिव कॉम्पोजर एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर टू मैनेज मनी फॉर हिम. तो श्रीदेवी ने एक पे कट लिया था इस फिल्म में so that they could accommodate A.R. Rahman's music for all of you. Film that released on this day in 2017.

7th जुलाई 2017 की ये रिलीज थी. इट वॉज अ हिट एंड दिस वॉज श्रीदेवीज लास्ट फिल्म. एज वी नो इट वॉज हर 300th फिल्म इन हर करियर और 50th एनिवर्सरी पे ये फिल्म रिलीज हुई थी. 50th एनिवर्सरी ऑफ हर करियर इन मूवीज. यू आर ट्यून्ड इनटू फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम. एक और ऐसे ही फिल्म पे लेकर जाने वाली हूँ जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी. एकदम अलग किस्म की फिल्म थी ये एंड इट वॉज अ बायोपिक और वो थी तरला दलाल पे. तरला दलाल जो कि जानी मानी यू नो शेफ एंड कुक दैट शी वॉज एंड शी हैज़ रिटन सो मैनी शी हैड रिटन सो मैनी एक्चुअली यू नो बुक्स एंड एवरीथिंग अबाउट cooking and recipes and all of that. She is definitely one of those very well-known legendary food writer, chef, author, cookbook author and host of cooking shows ki jinka naam na aaj bhi jab liya jata hai to it is actually a blast of nostalgia that we all probably जो उस वक्त में थे जब उनके रेसिपीज को हम फॉलो करते थे. इट इज़ अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी टॉक अबाउट तल्ला दलाल. और जब फिल्म बनी और फिल्म आई वी वर वेरी एक्साइटेड स्पेशली हुमा कुरैशी. अ वेरी डिफरेंट चॉइस टू पोर्ट्रे तल्ला दलाल बट How she did, we all have seen. She was amazing in that. बहुत सारी उन्होंने मेहनत की थी इसके लिए obviously to get the body language, the way she used to present herself in her cooking shows, all of that, the body language and the way she used to chop her vegetables से लेकर उनके जो पूरे हाव भाव थे सारे कुछ उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी. And she did a great job. Critically acclaimed film Huma Qureshi की It is Talla जो आज के दिन 2023 में रिलीज हुई थी which I am going to play a song from.

0: एंड दैट्स हुमा कुरैशी इन तरला दैट वी थॉरली इन्जॉयड वॉचिंग. बहुत ही अलग किस्म का रोल था, बहुत ही अलग दिखी थी उसमें. एंड इट वॉज अ बायोपिक ऑन तरला दलाल ऑफ कॉर्स. और इसके बाद अभी की अगर मैं बात करूँ, हुमा कुरैशी इज इन अनादर फिल्म विच इज़ बेबी डू डाई डू. जी हाँ, ये है सकीम सिबलिंग्स की प्रोडक्शन. सो ये सकीम सकीम सलीम एंड अलॉन्ग विथ सॉरी साकिब सलीम and Huma Qureshi, they are the brother and sister duo in power for this movie, जिनको उन्होंने produce किया है, co-produce किया है. और साथ में Huma Qureshi is in the lead role in this one as a deaf and mute killer. जी हाँ, यही जो है Huma Qureshi का charm है कि वो किसी भी role में ना बहुत अच्छा कर लेती हैं. अब इस film की बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता. It is on Z5, I believe it has released early. In early July and it is 3rd of July I believe that it released. And चाहे तो आप देखो इस फिल्म को, क्योंकि मैं तो भाई देखने ही वाली हूँ. हुमा कुरैशी की बहुत बड़ी फैन हूँ.
1: एक गूंगी वेरी कॉन्ट्रैक्ट किलर और उसकी साइलेंट लव स्टोरी.

0: अपनी ये लव स्टोरी तो साइलेंट है, मगर क्या करे, अपना काम जो वायलेंट है।
1: एंड दैट्स हुमा कुरैशी एंड इन बेबी डू डाई डू, उनका नाम है बेबी कर मर कर, दैट्स व्हाई।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: दो हजार 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: आई हैव बीन रिसर्चिंग रिटायरमेंट प्लानिंग।
12: ओह रियली, वेयर?
11: गूगल, यूट्यूब, अ गाय ऑन टिकटॉक,
12: और यू कुड जस्ट टॉक टू वेल्थ एक्टिव।
11: व्हाट्स द डिफरेंस?
12: दे क्रिएट अ रियल रिटायरमेंट स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स बट अ प्लान फॉर व्हेन योर इनकम।
10: Wealth Tactic, because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
13: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
10: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
14: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
15: Tracks that put you on the right track. Ooh,

part of my show is brought to you by AG Fintechs. Mr. Anil Granthi और उनकी टीम के साथ आप बात करके तो देखें आपको कितनी तसल्ली मिलेगी. You will figure it out yourself. भाई ऐसे लोग हैं जो बड़े शिद्दत के साथ काम करते हैं. They are very committed to their work. They use their decades of strategic tax planning and bookkeeping experience to enable small business owners succeed and build wealth by helping them save hundreds of thousands of dollars. And it is literally as true as it sounds. And इनके जो services हैं उन वो जाके इनकी website पे देखें agfintechs.com पे, चाहे वो business advisory and CFO service हो, customized tax and business solutions हो, expert tax filing services के लिए जो अगर आप तलाश कर रहे हो, dynamic bookkeeping के लिए, या फिर अगर R&D tax credits के साथ साथ estate planning and wealth management के लिए, या company formation के लिए, या इंडियन कंप्लायंस सर्विसेज के लिए, चेक योर 360 डिग्री टैक्स एंड फाइनेंशियल हेल्थ, एवरीथिंग दैट यू कैन गेट एट देयर्स. एंड दिस इज एजी फिनटैक्स फॉर दैट यू नो डायनामिक अप्रोच फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स, फाइनेंशियल एंड टैक्स सर्विसेज फॉर ऑल ऑफ यू. वंस अगेन agfintechs.com है इनकी वेबसाइट, और 469-942-9888 दैट्स द नंबर. एंड आई ऑलवेज से गिव देम अ कॉल टू figure out the vibe for yourself. और vibe मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है. मैं जिनसे भी सर्विस लेना चाहती हूँ ना, उनकी vibe से मुझे समझ में आता है कि मैं इनके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ कि नहीं. और अगर आप मिस्टर अनिल ग्रांधी से बात करेंगे या उनकी टीम के किसी भी मेंबर से बात करेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिक कनेक्शन मिल जाएगा.

ऐसे रोमांटिक गाने हो तो वाकई में सुनने का मन करता है। नहीं मानते आप तो मान लीजिए, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। जी हाँ, जैसे अच्छा बात अच्छे जो मतलब जो स्पीकर होते हैं जो बात कर सकते हैं अच्छा, वो अपने आप में एक हुनर है, वैसे ही लिसनिंग एक कंप्लीट एक डिफरेंट आर्ट है। दैट रिक्वायर्स अटेंशन ओवर टैलेंट, स्पिरिट ओवर ईगो एंड अदर्स ओवर सेल्फ। जब आप देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने की कोशिश क्या हम करते हैं रियली, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक किसी भी क्वालिटी रिलेशनशिप के लिए, सो टू से। और ये मैं मानती हूँ कि आई हैव टू बी ए बेटर लिसनर, क्योंकि मैं अपने आप को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सुनती हूँ टू गिव देम एन आंसर। यू नो, कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्वर्सेशन में आपका जवाब देना जरूरी है। कभी कभी सुनना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल यू कैन थिंग दैट यू कैन डू, एंड बीइंग इंटरेस्टेड रादर देन इंटरेस्टिंग विल चैनल योर लिसनिंग एंड इन फैक्ट स्पीकिंग स्किल्स। तो जी हाँ, ये सक्सेसफुली नेविगेट हम कर सकते हैं ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ्स के में, लेकिन ऑल्सो पर्सनल दुनिया में भी हम आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो यस, लेट्स ट्राई एंड होन आर आर्ट ऑफ लिसनिंग। वेल एज दे से, ऐसी बात करो कि लोग सुनना चाहें, और ऐसे सुनने की तहजीब रखो कि लोग आपसे बात करना चाहें। हाँ, ब्यूटिफुल इज दैट, है ना? तो इसी बात पे ये गाना सुनते हैं।

सुनिए और ध्यान से सुनिए, दिस इज अबाउट आर आईज. और आंखें जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनका ध्यान रखें अच्छे तरह से. आंखों पे बहुत सारे गाने हैं वैसे, वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल जो बात कर रही हूँ कि यू नो बियॉन्ड द पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ सो मेनी आउट देयर, उसके अलावा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि हमारे ना हर डेकेड में हमारा विजन चेंज होता रहता है, और इसीलिए राइट प्रोसीजर डिपेंड करता है एट द लेवल योर आईज आर इन लाइफ. तो भले आप 18 to 45 के बीच में अगर हो और आपको चाहिए कि आप ग्लासेस ना पहने, कॉन्टैक्ट लेंसेज ना पहने, तो उसके लिए कोई उपाय है. अगर आप 45 to 60 के बीच में हैं, देन नियर विजन हो सकता है आपका बदलने लगा हो, और आपको उसके लिए कुछ सर्विस चाहिए फ्रॉम विजनरी आई, तो आप ज़रूर उन तक पहुंच सकते हैं. एंड इफ़ यू आर 65+ और आपको लगता है आपको कैटरैक्ट सर्जरी की ज़रूरत है, देर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट यू हैव दैट यू कैन नॉट इवन बिलीव कि कितना कुछ बदल चुका है. इसीलिए विजनरी आई जो है ये आपको देना चाहते हैं ये सारे ऑप्शंस आपके सामने, बिल्कुल ओपन बुक के तरह वो यू नो प्रेजेंट करना चाहते हैं. डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला, ए फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो, इनके साथ आप कनेक्ट कीजिए और देखिए आपके कितने सारे ऑप्शंस हैं देन यू प्रॉबेबली आर अवेयर ऑफ. तो नंबर दे दूँ आप सीधे सीधे, 214-972-2020 इज दैट नंबर. LASIK-PLANO.com इज दैट वेबसाइट. इफ़ यू नीड दैट वेबसाइट अगेन, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, याद ना रहे एनीथिंग, प्लीज़ गिव मी अ कॉल एट 972-235-5555. और भूलिएगा नहीं कि अगर आप फन एशिया 2020 मेंशन करते हैं तो आपको मिलता है फ्री कंसल्टेशन. जी हाँ, ज़रूर याद रखिएगा. एंड वंस अगेन, इट्स विजनरी आई केयर इन प्लेनो दैट यू मस्ट विजिट. वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू मी एंड सो ब्यूटिफुली. लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनने और समझने की बात हो रही है यहाँ पे.

पता है ना, सुनने की बात कर रही थी कि लिसनिंग इज एन आर्ट, और ये तो आप कमाल का करते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फनीशा रेडियो, और हमें इतने प्यार से इतने दिल से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन पता है आपको, इस बारे में ना रिसर्च वगैरह भी हुई है कि भाई लिसनर्स जिसे कहते हैं ना, एक लिसनिंग की जो ये आर्ट होती है कि आपका आपके दोस्त परेशान है, आप उन्हें जो सुनते हो, आपकी फैमिली में कुछ कोई वेंट आउट करना चाहते हो, आप जो सुनते हो, जो वो सुनने की कला है ना, बिना कुछ यू नो सॉर्ट ऑफ रिप्लाई देने के चक्कर में नहीं, बल्कि सुनने के पर्पज से आप सुनते हो, यू नो. तो वैसे हर जेनरेशन में कुछ अपने खास बातें हैं. जैसे कि अगर जेन एक्स लो ना, तो ये वो लिसनर्स होते हैं जो बिल्कुल नो नॉनसेंस लिसनर्स माने जाते हैं. ये लोग बचपन में जो लैच की किड्स थे, यानी कि स्कूल से आने के बाद घर पर अकेले अपने इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ काम कर सकते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स वर्किंग हुआ करते थे, इस वजह से ये हाइपर इंडिपेंडेंट और बहुत बड़े ऑब्जर्वेंट बन गए. और कॉर्पोरेट स्पेस में जेन एक्स लीडर्स जो हैं, ये एक्टिव और प्रैग्मेटिक लिसनिंग के लिए जाने जाते हैं. सी, दिस इज ए वेरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट टू गिव, हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग, ये ना एक अच्छा वर्ड है, जनरली स्पीकिंग. हाँ, तो जनरली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स हियर, ये पाया गया है कि ये बिना किसी फितूर या ड्रामा के आपकी पूरी बात सुनेंगे, सिचुएशन को बिना फिल्टर किए समझेंगे, और बिना किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के आपको एकदम प्रैक्टिकल और काम के एडवाइस देंगे. ये है जेन एक्स. जेन एक्स जो कि क्या है इनका वो रेंज क्या है, द पीपल हु आर बॉर्न बिटवीन 1965 टू 1980. अब मिलेनियल्स के ओर चले 1981 से 1996 के बीच. मे बी लेट्स डू इट आफ्टर द सॉन्ग, क्या कहते हैं? फिर एक बार मुझे लगता है कि ये सेगमेंट अगले सेगमेंट तक रोल ओवर करने वाला है. भर भाई, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, तो सुनते रहें. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
3: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
2: क्यों?
3: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
2: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
10: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
11: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
13: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181, मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: Tracks that put you on the right track.

हम सब जो है ना, सब, फिर मैं जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन हम में से कई है जो बात करने में उस्ताद हैं यार. मेरे कोई भी फोन कॉल्स ना आधे घंटे से कम तो होता ही नहीं है. कहीं कहीं कभी कभी तो लगता है कि हमने कुछ ऐसी ज़रूरी बातें नहीं की होती हैं, लेकिन जितना वक्त मैं फ़ोन पे बिता देती हूँ बात करने में, गप्पे मारने में, उसके उसका मतलब मुझे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए एक्चुअली. तो सीरियसली, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो जो रेयर ब्रीड होते हैं ना ह्यूमंस के, जो चुपचाप बैठ के हमारी सारी बातें सुन रहे होते हैं, इन्हें कहा जाता है गुड लिसनर्स. तो जी हाँ, यू डेफिनेटली आर द बेस्ट लिसनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. कुछ कहने और सुनने की बातें हो रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कुछ जेनरेशनल एक्सपर्ट्स के बारे में, जिन्होंने बताया हमें कि जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन जी में जो ये गुड लिसनर्स होते हैं, जनरली स्पीकिंग, वो कैसे होते हैं, वही बताने वाली हूँ आप लोगों को. लेट्स सी कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं. यू नो, नॉट नेसेसरी कि हर जेनेक्स का बंदा या मिलेनियल या फिर जेनजी का बंदा, यू नो, एक जैसा ही हो. वी कैन डेफिनेटली क्रॉस ओवर, राइट? वील फाइंड आउट.

यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली, और गपशप गली में ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में जल्दी से बताना चाहती हूँ. सबसे पहले तो मिस्टर हुसैन पंजवानी, हु फाइंड्स टाइम इन हिज बिजी स्केड्यूल टू कम ऑन एयर एवरी मंडे एट 10:30, और वो आपको कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस देते हैं जो आप ध्यान से सुनते हैं ना, और उसका पूरा फायदा उठाते हैं कि नहीं, ये मुझे बताइए. क्योंकि ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम क्लोज टू 30 years दैट दे हैव बीन सर्विंग द कम्युनिटी. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि अगर घर खरीदने का सपना आप रख रहे हैं, पहला घर खरीदना चाहते हैं या फिर रीफाइनेंस करवाना चाहते हैं और एनी अदर नीड दैट यू हैव यू नो मॉर्गेज रिलेटेड नीड, तो आप जरूर इन तक पहुंचे. क्योंकि आपकी सारी जरूरतों को समझ के दे गेट यू द टेलर मेड सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो येस, गो टू देम एंड इन फैक्ट टॉक टू देम प्रायर टू दैट एंड यू विल नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. 9722455626 इज दैट नंबर. कॉन्फिडेंटली आप जाएं और अपने कॉन्फिडेंस का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पाएंगे आप उनसे. वंस अगेन द टीम ऑफ हुसैन साहब, मिस्टर पंजवानी साहब, ही इज अमेजिंग. यू शुड रियली लिसन टू दैट सेगमेंट दैट इज ऑन मंडेज एट 10:30 AM ऑल्सो टू गेट सम टिप्स एंड एडवाइसेस. ऑलराइट, dreamhomemortgage.com इज द वेबसाइट दैट यू मस्ट definitely log on to. Let's get you this next track और फिर Gen X, Millennials, Gen Z की listening capacity के बारे में थोड़ी बात करते हैं.

ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो वक्त आ चुका है कि हम साइकोलॉजिस्ट और जेनरेशनल रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें अबाउट लिसनिंग, बिकॉज यू आर सच वंडरफुल लिसनर्स. मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए एंड लेट्स फिगर आउट हम किस जेनरेशन को बिलोंग करते हैं, नॉट डेट वाइज या ईयर ऑफ बर्थ वाइज, बट एक्चुअली मेंटली. जी हाँ, जिन क्योंकि सुनने की कैपेसिटी ना जो होती है, जो लिसनिंग जो एक आर्ट होता है, ये एक कमाल का आर्ट होता है. और इसी के बारे में मैं बात करना चाह रही थी यहाँ पर और आप लोगों से जानना चाह रही थी इफ़ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इन दिस वन एक्चुअली, कि क्या वो बात है दैट मेक्स सम पर्सन ए गुड लिसनर, यू नो, क्या वो चीज़ है, क्या वो ट्रेट है यूँ कह सकते हैं कि जिसके कारण वो अच्छे लिसनर्स बनते हैं. दैट इज़ वॉट ऑल्सो आई थॉट आई विल फाइंड आउट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. ओनली इफ यू वॉन्ट टू शेयर, नो कंपल्शन हियर, ठीक है ना. क्योंकि जेन एक्स जो है ये है वो नो नॉनसेंस कैटेगरी के लोग होते हैं, जिन्होंने ना मतलब अपने आप को काफी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाया है. और वो एक वो हाइपर इंडिपेंडेंस जो उनको मिली है उसके कारण ये हुआ है कि एकदम क्लैरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहता है जेन एक्स का. और ये बिना किसी फितूर या ड्रामा के आपकी पूरी तरह से आपकी बात सुनेंगे, सिचुएशन को बिना फिल्टर के समझने की कोशिश करेंगे और बिना किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के ये आपको एकदम परफेक्ट प्रैक्टिकल और काम का एडवाइस देंगे. एंड दैट्स जेन एक्स लेडीज एंड जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च. और ये जेन एक्स होते हैं जो कि बॉर्न हुए हैं 1965 से 1980 के बीच. मिलेनियल्स वो जो 1981 से 1996 के बीच के जो बॉर्न हुए हैं, और उनका भी कुछ अलग ही वाइब होता है. दे आर ऑल्सो अमेजिंग लिसनर्स, बड़े एम्पेथेटिक रहते हैं ये जेन मिलेनियल्स के जो लिसनर्स होते हैं. और ये वजह काफ़ी सिंपल, क्योंकि मिलेनियल्स ही वो लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर मेंटल हेल्थ और इमोशनल इंटेलिजेंस और थेरेपी के बारे में खुलकर बातचीत शुरू की. और इसीलिए फैमिली और फ्रेंड सर्कल्स में ये सामने वाले को बिना जज किए सुनने की क्षमता रखते हैं. दे आर वेरी गुड एट इट. कॉर्पोरेट की दुनिया में भी ये एम्पैथेटिक काफ़ी लीडरशिप दिखा चुके हैं, और इसीलिए ये आपकी बात सिर्फ काम के लिए नहीं सुनते हैं बल्कि आपके इमोशंस और स्ट्रेस को समझने के लिए सुनते हैं. अगर आप परेशान हैं तो एक मिलेनियल को दोस्त बना लें एंड यू विल बी जस्ट चंगा. अगर आप जेन ज़ी की बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो जेन ज़ी वो हैं जिन्होंने सोशल अवेयरनेस और अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर अवेयरनेस जिनमें दिखता है हमें, वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ हो. ये पर्सनल बाउंड्रीज और दूसरों के जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ये उन लोगों की बात भी बहुत ध्यान से सुनते हैं जिनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है. बस ये हो सकता है फ़र्क कि ये लोग आमने सामने बैठ के उतनी नहीं बात करें जितना फ़ोन पर थ्रू टेक्स्ट या यूँ कह सकते हैं वॉइस नोट या ऑल ऑफ दैट. सो सब जनरेशन में अपने बड़े अच्छे अच्छे लिसनर्स होते हैं. आपका ट्रेट क्या है भाई, किन से सबसे ज़्यादा मैच किया, खुद ही देख लीजिए.

यहाँ बोलने की नहीं, सुनने पे हम ज्यादा जो वेटेज देते हैं, ये वो लोग हैं जो आहा करके जो आपकी सारी बात आगे क्या हुआ ये पूछ लेते हैं और आपका दिल बिल्कुल हल्का कर देते हैं। टू ऑल गुड लिसनर्स, मोर पावर टू यू। ऐसे ही आप हमारी बातें सुनते रहें, हम जो बहुत ज्यादा बात करते हैं हमारी बातें आप सुनते रहें। एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल माई लवली फाइनेंशियल लिसनर्स, क्योंकि आप बहुत अच्छे लिसनर्स हो। वंस अगेन दिस इज गपशप गली विथ मी टू, और यहाँ पे क्योंकि आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने सोचा कि ये बात बताते चलें कि श्री कृष्णा में आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। क्लासिक गोल्ड डिजाइंस, स्पार्कलिंग डायमंड्स, इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल की कलेक्शन दैट दे हैव फॉर यू। और कमाल की बात है कि 1967 से दे हैव बीन क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी फॉर यू, फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ अस। और ये बहुत कुछ कहता है अबाउट देयर ट्रेजर चेस्ट। और कृष्णा ज्वेलर्स का ट्रेजर चेस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट ज्वेलरी बट द memories that we have built with them. The 40 the entire place is a beauty for all of you. 13145 suite 220 main street in Frisco, that you all must remember. And it is Sri Krishna jewelry, ladies and gentlemen, that you must visit. Acha hum abhi jo baatein kar rahe the na, sunne sunane ki aur ye sab, usme koi shortcut nahi ho sakta. यू नो, ए गुड लिसनर इज वन जो आराम से, तबीयत से, अच्छे से, आराम से आपकी बात सुने, है ना। और वैसे ही अगर खाने की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट, मैं उन शॉर्टकट के तरफ ज़्यादा भागती हूँ जो कि फटाफट खाना बने वैसा टाइप का। और ऐसे में मेरा ब्रेकफास्ट जो यूजुअल ब्रेकफास्ट होता है ना, वो ब्रेड की तरफ जाता है। और ब्रेड के बारे में मुझे जब आज पता चला तो मैंने कहा यार ये तो भाई शेयर करना ही पड़ेगा आप लोगों से, क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ स्लाइस ब्रेड इज ए वाइल्ड राइड, लेडीज एंड जेंटलमैन। इट ऑल स्टार्टेड विद एन इन्वेंटर जिनका नाम था ओटो फ्रेडरिक रॉवेडर, जो पहले एक ज्वेलर थे और ऑप्टोमेट्रिस्ट थे। उन्हें स्लाइस ब्रेड का एक ऐसा जुनून सवार हुआ था कि उन्होंने अपनी 3 ज्वेलरी स्टोर्स को बेचा था जस्ट इन ऑर्डर टू गेट दैट फाइनेंस फॉर द मशीन दैट ही वांटेड टू क्रिएट टू स्लाइस ब्रेड्स। और फाइनली ऑन July 7, 1928, यानी कि आज ही के दिन, द चिली कॉफे बेकिंग कंपनी इन मिजूरी सोल्ड द वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट मशीन स्लाइस्ड लोफ, एंड इट वॉज एडवर्टाइज्ड एज द ग्रेटेस्ट फॉरवर्ड स्टेप इन द बेकिंग इंडस्ट्री सिंस ब्रेड वॉज रैप्ड। 1930 तक ना वंडर ब्रेड जो है ये कॉन्सेप्ट पूरे नेशन के लिए लेकर आया। मिजूरी से बाहर पूरे यूएस ने इसे इंजॉय करना शुरू किया, एंड दैट्स स्लाइस्ड ब्रेड लेडीज एंड जेंटलमैन। नहीं तो पहले लोफ के फॉर्म में जो बिकता था उसमें काटना काफी टाइम लेता था, अच्छे से स्लाइसिस, वो भी स्लाइसिस परफेक्ट नहीं होती थी, और इस कारण ये एक एब्सोल्यूट प्लेजर था फॉर द होम मेकर्स एज वेल। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, एंड ऑन January 18, 1943 द यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली बैंड प्री स्लाइस ब्रेड टू सॉर्ट ऑफ कंजर्व हैवी वैक्स पेपर एंड स्टील दैट द स्लाइसर मशीन यूज्ड, एंड दैट वाज द काइंड ऑफ बचत दैट दे वांटेड टू डू फॉर द मिलिट्री। फिर जब ये होम मेकर्स को पता चला तो उनका हुआ दिमाग गरम, और उनका जब दिमाग गरम हुआ तो जनरली उनकी जो लाइफ थी वो डल वॉर टाइम में जो एक ऑलरेडी एक ग्लूम था उसमें और एक ग्लूम आ गया था, एक अप्रोर आया, एक लीडिंग टू वेरी मेसी सिचुएशन। द बैन caused so much of grief and cussing and destroyed public morale so badly that the government completely backed down. Aur 2 mahine mein hi unhone wapas se ye sale pre-sliced bread ki jo sale hai wo wapas se shuru kar di. Now how interesting is that? So if you think of those shortcuts to your meal, jab aap wo sandwich fatafat bana ke khate ho na, aaj ka din tha jab ye sale shuru hua tha in the year 1928.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: जा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो।
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन। आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
13: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल।
7: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
13: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
9: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Omar Khwaja.
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-700-7000।

0: 9891233 5.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today. We got

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है फीफा फीवर इन गपशप गली. दिस लास्ट सेगमेंट एंटायरली डेडिकेटेड टू फीफा. तो कल से शुरू करें. जी हाँ, यस्टरडेज राउंड ऑफ 16 एक्शन वॉज फुल ऑफ हार्ट ब्रेक. यूएसए और पोर्चुगल दोनों के लिए एक ब्रूटल डे था ऑन द पिच एंड टीम यूएसए वॉज नॉट इन गुड फॉर्म एट ऑल येस्टरडे अगेंस्ट बेल्जियम. और बेल्जियम के जो क्लिनिकल काउंटर अटैक्स और इंटेंस फिजिकल प्रेजेंस को जो है वो हैंडल नहीं कर पाए. यूएस डिफेंस वॉज नॉट गुड एट ऑल एंड दे कुडंट गो टू द नेक्स्ट राउंड. ऑफ कोर्स दे लॉस्ट द गेम प्रिटी मिजरेबली. दैट वी मस्ट टेल यू ऑल हियर. इफ यू हैवंट वॉच द गेम यू नो यू गॉटन द हेडलाइंस एंड ऑल ऑफ दैट. जहाँ पे बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट थी लेकिन राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे उसकी बहुत सारी बधाइयां भी जाती हैं टू टीम यू एस ए लेडीज एंड जेंटलमैन. मीन वाइल द हाईली एंटिसिपेटेड Iberian Derby turned into a tragic tactical chess match जहां स्पेन ने अपने सिग्नेचर वो टीकी टाका पोजेशन से. टीकी टाका एक ऐसा स्टाइल है, प्लेइंग स्टाइल है जिसमें सारा खेल जो है शॉर्ट पासिंग या क्विक मूवमेंट या कंटिन्यूअस पोजेशन पर चलता है. दैट इज कॉल्ड टीकी टाका एंड दे आर ग्रेट एट दिस. सो स्पेन ने वही टेक्निक यूज करके पोर्चुगल को कंप्लीटली स्टाफ कर दिया था एंड दैट्स वॉट एग्जैक्टली हैपेंड. एंड रोनाल्डो को स्पेनिश डिफेंस ने पूरे मैच में हैविली मार्क करके सॉर्ट ऑफ एक कॉर्नर में कर दिया था. इन द सेंस ही दे डिडंट लेट हिम स्कोर एट ऑल इन हिज लास्ट मैच. और ये एक डेविस्टेटिंग लॉस के साथ एक गोल्डन एरा का जो एक हमने दी एंड देखा विथ रोनाल्डो सेइंग हिज फाइनल गुड बाइज एन इमोशनल वन टू द वर्ल्ड कप स्टेज हियर. सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज द अपडेट फ्रॉम यस्टरडे. अभी जो मैच चल रहा है बिटवीन अर्जेंटीना एंड इजिप्ट उसका भी हाल बताएंगे और जो सेकंड मैच होने वाला है आज वो भी बताएंगे.

A lot of expected and unexpected situations that are arising after the match and during the match that we are seeing. And एक मैच जो चल रहा है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले let's talk about the other match that is going to start at 3 p.m. CST and that's between Switzerland and Colombia. और ये BC Place Vancouver में होने वाला है. And दोनों ही teams अब तक unbeaten रही हैं और उनके defensive records कमाल के रहे हैं. सो यस, इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन लेडीज एंड जेंटलमैन. बोथ टीम्स हैव शोन इनक्रेडिबल टैक्टिकल डिसिप्लिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सेटिंग द स्टेज फॉर एन इंटेंस टैक्टिकल बैटल ऑन द पिच फॉर श्योर. और ये 3 बजे शुरू होगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचने के लिए अभी फिलहाल जो बैटल चल रहा है उसके बारे में बताना चाहती हूँ. इट्स प्रीटी इंटेंस एट अटलांटा इन जॉर्जिया, द अटलांटा स्टेडियम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. और जी हाँ, राउंड ऑफ 16 का ये जबरदस्त ड्रामा बिटवीन अर्जेंटीना और इजिप्ट जो चल रहा है, इट इज ऑन गोइंग क्लैश इज दैट इज ड्राइविंग मी क्रेजी. मतलब आप सोचें कि अर्जेंटीना जो कि रेनिंग चैंपियंस है, नंबर वन है, एंड इजिप्ट प्रॉबेबली 24 और 25 रैंकिंग है इनकी, इनके क्लैश चल रहा है. एंड राइट नाउ द स्कोर इज Egypt has scored a goal and Argentina has not yet opened it. And half time ho chuka hai. We are into the 55th minute of the game. Aur ye bahut taajub ki baat lag rahi hai ki agar Argentina nikal jata hai aaj, is aakhri राउंड ऑफ 16 डे से, तो यानी कि क्वार्टर फाइनल्स तक भी अगर नहीं पहुंच पाता है अर्जेंटीना, इट विल बी द बिगेस्ट अपसेट ऑफ द गेम फॉर श्योर. वील कीप यू पोस्टेड ऑन दिस वन एज वी एंटर द 56th मिनट ऑफ द गेम दैट इज ऑन गोइंग बिटवीन अर्जेंटीना एंड इजिप्ट.

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा डिंपल दीक्षित उर्टी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण जारी किया है।

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जाते जाते आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई द राउंड ऑफ एट यानी कि क्वार्टर फाइनल्स कल के रेस्ट के बाद शुरू होने वाला है. टुडे इज गोइंग टू बी द लास्ट राउंड ऑफ 16 एंड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव द स्कोर दैट इज गोइंग ऑन दिस मैच दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन अर्जेंटीना एंड इजिप्ट. और ये अनबिलीवेबल लग रहा है, इट इज मेसी वर्सेस मोहम्मद साला दैट वी आर सीइंग ऑन द फील्ड ऑफ एटलांटा स्टेडियम. एंड इजिप्ट ने दो गोल बना लिया और अर्जेंटीना ने अभी तक कुछ नहीं बनाया. इट्स ओके, ऑल राइट, मे बी इट वॉज एन ऑफ साइड बिकॉज अभी 2-1 हुआ है, वापस से 1 हो गया है. दैट मीन्स दैट गोल वॉज कैंसल्ड, VAR के जरिए शायद उस गोल को एक्नॉलेज नहीं किया गया एंड द डिसीजन हैज बीन रिवर्टेड. इट्स 1-0 बिटवीन इजिप्ट वर्सेज अर्जेंटीना. और अगर अर्जेंटीना हारती है, आई डोंट नो ये कैसे ही पॉसिबल होगा. लास्ट टाइम के वर्ल्ड कप के चैंपियंस अगर इस बार हारते हैं, एंड दैट्स राउंड ऑफ 16 दैट इज ऑन गोइंग. और कल एक दिन के गैप के बाद, एक दिन के ब्रेक के बाद क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे. दैट विल गो ऑन अंटिल July 11th. सेमी फाइनल्स विच इज राउंड 4 विल स्टार्ट ऑन July 14th एंड 2-day सेमी फाइनल्स दैट इट विल बी July 14th एंड 15th. थर्ड प्लेस मैच July 18th को होगा एंड वर्ल्ड कप फाइनल टू बी हेल्ड ऑन July 19th, लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: एंड दैट एनर्जेटिक एक्सिट दैट आई वांट टू टेक फॉर माय टुडे शो. और फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, इट इज ऑल अबाउट पैशन फॉर फीफा दैट वी शेयर विद ऑल ऑफ यू इन द लास्ट सेगमेंट. एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में भी बताना चाहती हूँ. फॉर ऑल दोज हु एक्टिवली लुक फॉर द राइट डॉक्टर्स, हियर इज अ प्लेस फॉर यू, जो आपको पूरी तरह से पूरा वक्त देंगे जो आप डिजर्व करते हो व्हेन यू गो टू सी ए डॉक्टर, राइट. और इट इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ yourself in just the right way. Anxiety care ho, fibro scan for alcohol related liver concerns, vitamin B12 deficiencies, testing and more are all available at Passion Health. You can schedule your appointment at 214-666-6259. Book your appointment right away. It is Passion Health Primary Care that I want to end my show with. And the final score between Egypt and Argentina right now at the 65th minute into the game, it is 1-0. Egypt taken an early lead, and that's all the time I have.
1: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
4: Tarikh par tarikh.
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: Kya aapko business khareedne ke liye loan chahiye?
7: Call the SBA Loan Experts.
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
10: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
10: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
14: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
15: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
16: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts, facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
17: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
4: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

वेरी गुड आफ्टरनून टू माय देसी पीपल. आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा. आज का टॉपिक थोड़ा अजीब है, थोड़ा फनी है और थोड़ा पेनफुल भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन पलों की जो जब हुई थी उस वक्त तो हमें लगा था कि भाई मैं कहाँ से ये जमीन फट जाए और मैं घुस जाऊं इसके अंदर, लेकिन आज जब हम उन मोमेंट्स को याद करते हैं तो बहुत ही हंसी आती है. जी हाँ, आज का टॉपिक है कि आपकी जिंदगी के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स क्या थे. वो मोमेंट जब आप किसी को हाथ हिला रहे थे और पता चला कि वो आपके पीछे वाले को वेव कर रहा था, या फिर जब आपने किसी को कॉन्फिडेंटली हैप्पी बर्थडे बोल दिया जिसका कि बर्थडे था ही नहीं. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सब मिलकर अपनी अपनी बेइज्जती सेलिब्रेट करने वाले हैं. आपको अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बताने हैं, मुझे कॉल करके 972-235-5555.

आज हम बात कर रहे हैं हमारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स पलों के बारे में, जिनको आज हम याद करके बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। मैं अपनी बताऊं तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं रेस्टोरेंट गई थी अपनी फैमिली कजिन्स वगैरह के साथ, और जब खाना खा लिया हमने तो पता नहीं मेरी मसल मेमोरी में था, जो नॉर्मली हम घर पे करते हैं, कि खाना खाने के बाद जो खाई हुई प्लेट है उसको मैं उठा के वॉशरूम की तरफ जाने लगी, एंड मेरे पीछे पीछे जो सर्वर्स थे, वेटर्स कहले, वो दौड़ते दौड़ते आए, मैम आप दे दीजिए प्लीज। इतना एम्बैरेसिंग था। मेरे कजिन्स आज तक उस बात को याद करके काफी ज्यादा हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्लस ये पब्लिक प्लेस में हुआ, मतलब जब ऐसे मोमेंट्स पब्लिक प्लेसेस में होते हैं ना, तो एम्बैरेसमेंट और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। चाहे ऐसा हो कि यू नो एक्सेलरेटर पे गिर गए, ग्लास डोर को ओपन समझ कर टकरा जाना, पुश और पुल में कंफ्यूजन तो काफी कॉमन है, रेस्टोरेंट में लाउडली किसी को अपना फ्रेंड समझ लेना, एयरपोर्ट पे गलत लगेज उठा लेना, और मॉल में गिरते गिरते बच जाना और प्रिटेंड करना कि कुछ नहीं हुआ है, ये तो नॉर्मल ना, दिस इज माय वॉकिंग स्टाइल। वैसे आपके कौन से एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रहे हैं लाइफ में, आप हमें कॉल करके बताइए एट 972-235-5555।

आज हम सुन रहे हैं आप लोगों के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। कुछ मैंने भी शेयर किए कि मेरे लाइफ के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स क्या थे, और बहुत सारे कॉल्स आए हमने कुछ रिसीव किए, जिनमें से लीजा की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक बार एक डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट वगैरह लेके अपनी मॉम को लेके गई, और जैसे ही वो डॉक्टर के केबिन में पहुंची अपनी मॉम को लेके, तो वो एक और पेशेंट भी वहां पे था, एंड शी फेल डाउन सडनली लाइक आउट ऑफ नो वेयर, और बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हुआ उनको। और वो फटाफट उठी, उन्होंने शो किया कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, वो तो अपनी मम्मा को लेके आई है। लेकिन लेकिन लेकिन वो वापस आते वक्त जब वो ड्राइव कर रही थी, तो उनको काफी पेन हुआ, एंड जो उनकी बाकी की चीजें थी, जैसे वॉलमार्ट वगैरह उनको जाना था शॉपिंग वगैरह करने के लिए, वो नहीं जा पाई। थैंकफुली वो अभी ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बट लास्ट वीक ही हुआ इनके साथ, एंड शी जस्ट रिमेम्बर्ड इट कि एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को बेचारे ने कैसे हैंडल किया।

0: और कई बार एम्बैरेसमेंट भी होती है। अभी अभी सुरैया जी का फोन आया मुझे और उन्होंने बताया कि जब वो शुरू शुरू यूएस आई थी तो उनको काफी कंफ्यूजन होता था कि यू नो हमेशा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो लाइन को लेके काफी कंफ्यूजन होता था उनको।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
5: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
8: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटल।

0: सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
2: Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla, Nasilla,

चलिया चलिया, आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 FM और ये शो है आफ्टरनून अड्डा विद मी यानी कि आरजे सिमी। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में। और सुरैया जी का फोन आया था, उन्होंने याद किया कि जब वो शुरू में यूएस आई थी और उनको पता नहीं था कि यहाँ पे लाइन का सिस्टम होता है, लाइक यू हैव टू वेट जब तक कि आपका टर्न ना आए। और वो डायरेक्टली बिलिंग काउंटर पे चली गई थी और पीछे से सब लोग बोलने लगे, लेडी यू हैव टू फॉलो द लाइन। काफी होता है अगर आप शुरू में यूएस आए हैं, और उनके लिए काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मतलब मैंने आपको पब्लिक स्पेस में एम्बैरेसमेंट के बारे में बताया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब एक बात तो पक्की है कि हम सबकी लाइफ में एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते रहते हैं। उस वक्त लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कुछ सालों बाद आपको वही सारी कहानी जो है काफी फनी रहती है और वो कहानियां बन जाती है दूसरों को सुनाने के लिए। और शायद इसी का नाम जिंदगी है, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी ट्रेजेडी और बहुत सारी बेइज्जती।

वैसे हमारा जो आज का सेगमेंट था जहाँ पे हम बातें कर रहे थे अपनी लाइफ के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बस एक लास्ट कहानी और सुना देती हूँ। अभी अभी हमारे एक लिसनर का फोन आया, शाहिना जी ने बताया कि जब वो शुरू यूएस आई थी तो अपनी कुछ देसी हैबिट्स के साथ आई थी ऑफकोर्स। तो उन्होंने जब वो सामान वगैरह खरीदा और फिर वो बिलिंग काउंटर पे गई और वहां पे अमेरिकन थी जो कि बिलिंग वगैरह कर रही थी, और वहां पे जाके मोहतरमा बोल रही है कि मैं तो इतने में ही दूंगी। मस्त बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी, टिपिकल देसी हैबिट। और वो भूल गई कि, और यार फिर उनको शुरू शुरू में किसको पता होता है यार, किसी को नहीं होता है, तो वो भूल गई कि यहाँ पे तो है बार्गेनिंग होती भी नहीं है। तो मैं तो उस अमेरिकन के बारे में सोच रही हूँ कि बेचारी, वो तो उसके एसओपी में लिखा ही नहीं होगा यार ये सब, कि ये भी हो सकता है कि लोग आए और बोले कि इतने पैसे में देना है तो दो वरना मैं चली। वेरी इंटरेस्टिंग। अब बढ़ते हैं अपने शो के अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है गिव अवे राउंड। और गिव अवे स्पेशल आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एमएस धोनी का बर्थडे है आज, तो जो सवाल है वो उनसे रिलेटेड होगा। अगर आपको जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करना है और आप जीत सकते हैं $10 ऑफ फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। अगर आपकी बिलिंग जो है $50 की होती है वहां पे डाइनिंग करने पे, तो तैयार हो जाइए। सवाल बिल्कुल तैयार है मेरा कि एमएस धोनी के लाइफ में जो मूवी बनी है, बॉलीवुड मूवी, उसका आपको नाम बताना है, पूरा नाम बताना है, ठीक है, बी केयरफुल। और जो जिस एक्टर ने उसमें एमएस धोनी का रोल किया है इन द मूवी, आपको उन एक्टर का भी नाम बताना है। ओके, सो द मूवी नेम एंड द एक्टर नेम, यू हैव टू कॉल मी एट 972-235-5555।

हमें हमारे गिव अवे राउंड का विनर मिल चुका है। आज हमने बर्थडे स्पेशल किया था, MS धोनी का बर्थडे है, और हमने पूछा था कि वो कौन सी बॉलीवुड मूवी है जो उन पे बेस्ड है। पूरा नाम बताना था, विच वॉज MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और जो एक्टर थे इसमें वो थे सुशांत सिंह राजपूत, और जो सबसे पहले फटाफट आंसर दिया है वो शाहिना है। शाहिना, कांग्रेचुलेशन, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन द डाइन इन ऑप्शन। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेशल थाली मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस, जो कि रोटेट होता रहता है हर दिन एट द टाइम ऑफ लंच। टू डू एक्सप्लोर, ये लोकेटेड है एट मैकडरमट ड्राइव इन एलन। और अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, देन यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑल्सो, विच इज चंडीगढ़ बाइट्स .com।

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी, कंटिन्यूइंग योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। और अभी हम सुन रहे थे इश्क अमीना का 2.0 वर्जन। अब चाहे आपको ओरिजिनल पसंद हो या फिर आपको रिमिक्स वर्जन पसंद हो, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है। देखिए, पहले वर्जन में, मतलब जो ओरिजिनल वर्जन था, उसमें ऐश्वर्या राय इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी डैजलिंग लग रही थी, और द 2.0 वर्जन में हुमा कुरैशी भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही डैजलिंग अट्रैक्टिव लग रही हैं। वैसे अगर आप भी अपने स्पेशल मोमेंट्स को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, डैजलिंग लगना चाहते हैं, तो मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जरूर जाएं, क्योंकि ये हो सकता है आपका फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, जो कि एलिगेंट है, टाइमलेस है, और इसकी जो शाइन होती है ना डायमंड में, वो तो मतलब कमाल होती है। फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड ईयर रिंग्स टू डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। चाहे आपको अपने एंगेजमेंट के लिए चाहिए, एनिवर्सरी के लिए चाहिए, सेलिब्रेशन के लिए चाहिए, या फिर खुद को ट्रीट देने के लिए चाहिए, आप जरूर मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जाके एक्सप्लोर करें। और अगर आप नहीं जा पा रहे तो उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी आपको उनके लेटेस्ट कलेक्शंस और अपडेट्स और भी जो डिटेल्स होते हैं ऑफर्स वगैरह के बारे में, वो मिल जाएंगे। वैसे कोई है जो आपके खैरियत चाहता है? कौन? पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। उन्होंने आपको पैगाम भेजा है, हमारे सारे फन एशिया लिसनर्स को टिप ऑफ द डे भेजा है, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आज का जो टिप ऑफ द डे है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाने से, क्योंकि अक्सर हम शुगर पे तो कंट्रोल रखते हैं ना, मतलब लगता है कि ओहो हो शुगर, अच्छा ज़्यादा शुगर नहीं खाना है, डायबिटीज़ हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट पे कंट्रोल कम ही लोग रख पाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो गया तो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। और ऐसी बहुत सारी पैकेज्ड फूड्स जो हैं, और US में तो हम काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाइम वगैरह कम रहता है और हेल्प नहीं रहता है, तो बहुत सारे पैकेज फूड्स बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट करते हैं दैन दी एक्सपेक्टेड। तो आप ज़रूर उनके न्यूट्रिशन लेबल्स को चेक करें, ताकि आप एक हेल्दियर चॉइस बना पाए अपने लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और इस खैरियत के बाद एक खैरियत तो अगला गाना भी है।

देखिए लव में ट्विस्ट तो ठीक है, लेकिन अगर आपको खाने में ट्विस्ट लाना है तो आप पेस्ट्री ईटरी जरूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवर फूड चाट से लेके फ्यूजन बाइट्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल, सब कुछ। और अगर आप अभी तक पेस्ट्री नहीं गए हैं, जो कि हब 121 में लोकेटेड है, तो आप लाइफ में अच्छा खाना जरूर मिस कर रहे हैं, एक बार ट्राई तो कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड एक मॉडर्न फ्लेवर के साथ। तो चाहे ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, डेट नाइट हो, या फिर दोस्तों के साथ एक फूडी मीटअप करना है, आप यहाँ जरूर जाएं और एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको मिलेगा परफेक्ट मिक्स फ्लेवर का, एनर्जी का और वाइब्रेंट वाइब का। और अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स के बारे में या फिर उनके मेन्यू के बारे में, तो आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, विच इज space3eatery.com।

अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा सोल्यूशन जो आपको बताए स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, आप अगर लुकआउट कर रहे हैं कि कोई है ना आपको हेल्प कर दे थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए, या फिर आप जो करेंट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें, उसके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या है जो कि यू नो बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एट माई टाइम इक्विटी। तो चाहे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लान कर रहे हो, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना क्या प्लान कर रहे हो, तो डू रीच आउट एट माई टाइम इक्विटी। आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 4697021272, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज माई टाइम इक्विटी.com।

हम सबको अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है. वी डू ऑल लव आवर जिंदगी, और नहीं है तो कर लीजिए. और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने हेल्थ को प्रॉपर रखें, फिट रहें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जिंदगी मिले. और इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि कहाँ जाएं, एनुअल चेकअप वगैरह कहाँ होता है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर्स आपको सिर्फ 5-10 मिनट के लेने नहीं, बिल्कुल 30 के 30 जो पूरा अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होता है, पूरे आधे घंटे आपके साथ बिताते हैं. क्योंकि इनका मानना है कि आपके हेल्थ को समझने के लिए 5-10 मिनट काफ़ी नहीं है. यहाँ पे आप एक फैमिली की तरह ट्रीट होते हो, ना कि एक पेशेंट की तरह. तो आप अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आपको एनुअल फिजिकल केयर चाहिए, एंग्जाइटी केयर चाहिए, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड कंसर्न्स है आपके लिवर को रिलेटेड, तो भी आप जा सकते हैं. विटामिन B12 डिफिशेंसी टेस्टिंग भी होती है, और भी बहुत कुछ होता है. आप चेक कर लें इनके वेबसाइट पर जाके. और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो डू कॉल देम एट 214-666-6259. आई रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 214.

0: अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम लाए हैं गिव अवेज और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए. सो स्टे ट्यून्ड एंड बी विद अस. वी आर फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और ये जो शो है ना आफ्टरनून अड्डा, दिस इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. सो इफ यू आर लुकिंग टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम, डू कॉल देम एट 4699429888 या फिर उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं agfintax.com.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association

0: 4.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 doors डाउन, विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
12: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
15: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
16: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
17: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax, plan smart, save more.
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
22: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
20: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। वैसे इतना ही भयंकर मूड होने वाला है जब विशाल और शेखर के कॉन्सर्ट में आप लोग जाएंगे, तो ऐसा ही वाइब, ऐसी ही मस्ती, ऐसे ही अमेजिंग एकदम थिरकने वाले सॉन्ग्स बजने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं तो भाई बहुत क्लोज आ गया है, 12 जुलाई को है, बस इसी संडे तो हो रहा है एट कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड। और टिकट नहीं भी खरीदा है कोई बात नहीं, आप kashpatelproductions.com पे जाइए, वहां पे आपको टिकट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको 30% का डिस्काउंट चाहिए तो फन एशिया कोड यूज कीजिए, कोड एग्जैक्टली यही है, फन एशिया अगर आप टाइप करेंगे वहां पे तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। तो प्लीज गो गाइज एंड एंजॉय, क्योंकि ये मौके ना कॉन्सर्ट के जहां पे विशाल शेखर जैसे आर्टिस्ट आ रहे हो ऐसे कम ही मिलते हैं। वैसे अगर आपको मौका चाहिए कुछ और भी जीतने का तो गिव अवे राउंड भी आ रहा है, तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए एक सॉन्ग बजाने वाली हूँ और आपको बताना है कि इस मूवी का नाम क्या है, और अगर आपने सही बताया और फटाफट बताया तो आपको नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट मिलेगा। इज़न्ट दिस अमेजिंग टू डू हियर द नेक्स्ट सॉन्ग, आपको मुझे कॉल करके बताना है एट द वेब जो स्टूडियो का नंबर है दैट इज 972-235-5555। मूवी का नाम गाइस, ओके?

आई एम सरप्राइज्ड गाइज, मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इसका सही जवाब देंगे, फटाफट पकड़ लेंगे कि ये कौन सी मूवी का गाना है, लेकिन काफी कम लोग गेस कर पाए। सही जवाब था अतरंगी रे, द सॉन्ग वॉज रेत जरासी। और जो हमारी आज के विनर हैं इस गिव अवे राउंड की, वो हैं मेघा। मेघा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड। आपको वहां पे जाना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है और $20 ऑफ करा लेने हैं। वैसे अगर आप नहीं भी जीत पाए तो भी आप जरूर जाए, क्योंकि यहाँ का जो मेक्सिकन फ्यूजन है ना खाने का, वो कमाल का है। यहाँ पे आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जबीहा हलाल ऑप्शंस हैं और बहुत सारी वेजिटेरियन चॉइसेस हैं। ऑल ये सब कुछ है ना, वो पैक होके आता है एक बोल्ड फ्लेवर में, और वाइब की तो बात ही मत कीजिए। वाइब यंग है, कलरफुल है, मॉडर्न है, एनर्जेटिक है, परफेक्ट प्लेस है अगर आप हैंग आउट्स के लिए ढूंढ रहे हैं कोई जगह, या डेट नाइट्स के लिए, या फिर चिल करने के लिए अगर कहीं पे जाना है तो जरूर जाए। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्यूरेटेड कॉकटेल्स और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स भी मिलते हैं, और इनके हैप्पी आवर्स भी होते हैं गाइस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और हर दिन, हर सिंगल डे, आपको स्पेशल डील्स भी मिलते हैं। तो एक बार जाके पूछ भी ले कि भाई आज का खास क्या है, और जो नेक्स्ट खास गाना है वो मैं अभी बजाने जा रही हूँ फ्रॉम द मूवी हीरोपंती।

This was an amazing track from the movie Brothers, one of my favorite songs, Sapna Jahan है song का नाम. और जाते जाते मैं आपको एक last बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये show पसंद आ रहा है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो do call me at 972-235-5555 और बाकी मस्ती के लिए, मजे के लिए tune in किए रहिए Fun Asia Radio पे 104.9 FM. और do follow us on our social handle, Instagram, Facebook वगैरह पे. और तारा कमर्शियल एनर्जी की मैं बातें करना चाहती हूँ जाते से पहले, कि अगर आप ढूंढ रहे हैं एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, तो सारे बिजनेस ओनर्स ध्यान से सुनिए. तारा कमर्शियल एनर्जी के पास है ना, रेट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, सर्विस काफ़ी रिलायबल है और इनके एनर्जी प्लान्स कस्टमाइज्ड हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प होगी अपने बिजनेस में. अगर आप उनको कॉल करना चाहते हैं तो डू रीच देम आउट एट 844-428-2808 या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाइए विच इज़ taraenergy.com. और एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये सॉन्ग जो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी उनको सुनना था, तो मैं जाते जाते ये भी सुना देती हूँ. Take care, guys.

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
2: जैसे इन्होंने थैंक यू बोला, मुझे भी थैंक यू बोलने का वक्त आ गया है। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी इसी वक्त पे 12:30 से 2:30 बजे तक मेरा शो होता है आफ्टरनून अड्डा। आई एम आरजे सिमी एंड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विल मीट अगेन टुमारो।
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
4: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338। 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर। द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप। डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट। Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
13: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
5: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
16: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में? सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. और मैं आपके साथ रहती हूं जी मंडे थ्रू फ्राइडे 5 बजे तक, 2:30 बजे से 5 बजे तक मेरा और आपका सफर यूं ही जारी रहता है एवरी डे मंडे टू फ्राइडे. और आप भी मेरे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू. और आप जानते हैं कि हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं कुछ नया, कुछ डिफरेंट. आज ट्यूजडे है, टेरिफिक ट्यूजडे को आपके लिए आता है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डालते हैं हम कुछ ऐसे सितारों पे जिन्होंने हमें अपने काम से किया बहुत ज्यादा महसूस, यानी कि कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिक बॉलीवुड को दिया जो मैं और आप सुनना पसंद करते हैं. और आज हमने एक नहीं, दो सितारों पे एक साथ बत्ती डाली है. यानी कि स्पॉटलाइट पे हमने दो सितारों को एक साथ खड़ा किया है जो कि 12 जुलाई को आपके लिए आ भी रहे हैं. देखिए जी, जो कॉन्सर्ट आपके लिए आने वाला है विशाल शेखर का 12 जुलाई को कर्टिस कल्वल सेंटर में, आज की स्पॉटलाइट डाली है मैंने उन्हीं के ऊपर. उन्हीं के बनाए हुए कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले करूंगी और आपको एक अंदाजा दूंगी कि वो जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा और क्यों आपको वो कॉन्सर्ट बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. सो गेट योर टिकट्स नाउ. कैश पटेल प्रोडक्शंस .com पे टिकट्स अवेलेबल हैं. फन एशिया का कोड इस्तेमाल कीजिए 30% ऑफ के लिए. लेट्स पुट दैट स्पॉटलाइट टुडे ऑन विशाल शेखर.

प्यार में कभी कभी से सुन रहे थे आप ये गाना। दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसमें विशाल शेखर ने एज अ ड्यूओ काम किया और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1999 में। आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है विशाल शेखर पे, जो कि एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड म्यूजिक कंपोजर्स हैं, यू नो प्रोड्यूसर्स हैं, गाने गाते हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं और इनकी जोड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। विशाल अपनी गाने तो ये लोग मिलके एक साथ कंपोज करते हैं, लेकिन विशाल जो है वो जो गाने गाते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर के होते हैं और शेखर जिन गानों को टच करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, वेरी सॉफ्ट, मेलोडियस, रोमांटिक, जबकि विशाल इज लाइक डैन डैन वाले गाने जो है वो विशाल गाते हैं। सो कुछ इस तरह के बहुत सारे गाने आज आपके लिए प्रेजेंट किए जाएंगे राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। आई हैव द नेक्स्ट सॉन्ग लाइंड अप फॉर यू। ये वो गाना था जिसके लिए विशाल शेखर की जोड़ी ने जीता अपना पहला फिल्म फेयर आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट। इससे पहले वो गाने कुछ दे चुके थे, जैसे कि फिल्म चैंपियन जो 2000 में आई, फिर बॉलीवुड कॉलिंग, मुझे कुछ कहना है, कांटे। वाद कांटे का एक गाना मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगी, बट दिस फॉर दिस मोमेंट आई वांट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू। झनकार बीट्स इस फिल्म का नाम था और इस फिल्म के गाने दिए थे विशाल शेखर ने और इस स्पेशली इस गाने को काफी पसंद किया गया जो आपके लिए प्ले होगा। एंड दे गॉट देयर फर्स्ट अवार्ड, दैट वॉज द फिल्म फेयर आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट। दिस इज तू आशिकी है।

If you're on an H-1B, F-1 या फिर L-1 वीज़ा और एनी अदर इमिग्रेशन वीज़ा और आप प्लान कर रहे हैं योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज द राइट चॉइस फॉर यू. दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करते हैं एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम्स, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, एज वेल एज परम लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. आपका किसी के भी हवाले से कोई सवाल है, एनी इमिग्रेशन क्वेश्चन दैट यू हैव, सेंड देम एन ईमेल एट दिस ईमेल आईडी info@seemamehtalawfirm.com. वंस अगेन दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehta, SEEMA, सीमा मेहता, MEHTA, seemamehtalawfirm.com पे ईमेल भेजिए अपनी एंड दे विल गेट बैक टू यू एंड डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू. दिस इज द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता. और आपके लिए प्ले कर रहे हैं आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में मैं लेकर आई हूं जी. स्पॉटलाइट हमने डाली है, रोशनी डाली है विशाल शेखर पे और उनके कुछ बनाए हुए खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले किए जा रहे हैं. अब जो गाना आपके लिए प्ले करूंगी दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी मुसाफिर, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट हुआ गाना और अभी लेटली आपने उसका, लेटली नहीं मतलब कुछ साल अभी उसको भी हो गए हैं, तनिष्क बागची ने इस गाने का एक नया वर्जन क्रिएट किया था फॉर द मूवी बाटला हाउस, जिसमें नौरा फतेही थी और वो गाना हो गया एक बार फिर ओवरनाइट हिट. बट आई एम प्लेइंग द वेरी ओरिजिनल विशाल शेखर्स साकी साकी.

डायरेक्टेड बाय संजय गुप्ता, संजय दत्त, अनिल कपूर, समीरा रेड्डी, अदित्या पंचोली हमें इस मूवी में यानी के मुसाफिर में नजर आए, जिसका ये सुपरहिट गाना साकी साकी आप सुन रहे थे और जिसका रेंडिशन तो हम देख ही चुके हैं, नौरा फतेही ने लगा दिए थे उस गाने को चार चांद। तो जी ये तो हुई साकी साकी की बात, लेकर रही हूँ कुछ आपके लिए ब्यूटिफुल म्यूजिक क्रिएटेड और संग बाय विशाल एंड शेखर। अगला गाना आपके लिए लाइंड अप है टेकन फ्रॉम द मूवी Bluff Master, प्रियंका चोपड़ा एज वेल एज अभिषेक बच्चन इन द मूवी। बट अगर उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि कोई आपका जानने वाला है जो DFW में रीलोकेट होना चाहता है, या आप अपना घर नया खरीदना चाहते हैं, या आप पुराना घर बेच के नया खरीदना चाहते हैं, मतलब जो भी आपका रियल एस्टेट का यू नो इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो नवनीता खेमका को आपकी हेल्प करने दीजिए। शी इज विद केलर विलियम रियल्टी, शी विल गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे विद पर्सनलाइज्ड सर्विस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड जेन्युइन केयर। आपका हर इंसान की जिंदगी में उसका जो घर होता है जो वो खरीदता है वो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है, एंड नवनीता विल ट्राई टू मेक दिस even more special for you, even the journey special for you. So give her a call. The number is 347-449-4242. The number again is 347-449-4242. This is Navneeta Khemka with Keller Williams Realty.

0: है या रिश्तेदारों को?
1: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलसिस न्यूएस्ट।
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: इट्स लॉसन।
4: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
5: इट्स लॉसन।
4: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
6: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत, find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
12: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
14: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
15: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
16: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
15: कैसे?
16: पेज 3 ईटरी?
15: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
16: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
15: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
17: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
18: एक बात बता, retirement में सबसे scary क्या होता है?
19: क्या?
18: Salary बंद हो जाती है.
19: और bills बंद नहीं होते.
18: Exactly. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रैटेजी बनाते हैं।
19: मतलब?
18: ऐसी स्ट्रैटेजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
14: The Wealth Tactic, smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
4: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Funasia Radio.
0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूँ किरण आपके साथ और मंडे टू फ्राइडे 2:30 से 5 बजे तक. आज है जी ट्यूसडे और बॉलीवुड स्पॉटलाइट लेकर आती हूँ. ट्यूसडेज को स्पॉटलाइट डाली है हमने विशाल एंड शेखर पे, उनके बनाए हुए कुछ खूबसूरत गाने और बहुत सारे गाने तो वो उन्होंने खुद भी गाए हुए हैं जो बैक एंड फोर्थ मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ. अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी, अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है जैसे कि यू आर प्लानिंग फॉर अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग इवेंट है या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन है आपकी, तो बिल्कुल अब मैं जानती हूँ कि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है ये, कि यानी कि जी वेन्यू क्या होगा, डिकोर क्या होगा, केटरिंग कौन करेगा और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा जो आपका स्ट्रेस की जो पोटली है ना, आप उसे बंद कीजिए और हवाले कर दीजिए वैनेसा इवेंट्स के. जी हाँ, दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग everything together in one place, from venue selection and beautiful decor by signature events to photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. To ek complete aapko mukhtalif jagahon pe nahi jana, ek complete package aapko milega Vanessa events ke sath. So aap aaram kare, अपनी मेमोरीज बनाइए और वैनेसा इवेंट्स को बाकी सब कुछ हैंडल करने दीजिए. और आपको कहाँ फोन करना है टू प्लान दिस इवेंट और टू टेल देम टू प्लान इट, दिस इज हरी बसेरा. हरी बसेरा साहब को कॉल कीजिए एट 469-442-8770. 469-442-8770 इज द नंबर टू हरी बसेरा साहब. ही इज विद वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. और आपके लिए प्ले कर रहे हैं जी विशाल शेखर के कुछ खूबसूरत गाने. दिस वन इज गोइंग आउट स्पेशली टू सफी. सफी, एंजॉय.

दस फिल्म से सुन रहे थे आप दस बहाने, और ये जो टाइटल ट्रैक था जो कि विशाल शेखर ने कंपोज किया था, इसको बाद में बागी थ्री ही के लिए विशाल शेखर ने दोबारा से रिक्रिएट किया, जो भी आपकी समातों से टकरा रहा था। तो जी, ये हुई बात इस दस बहाने की। कुछ गाने म्यूजिक कंपोजर्स ही अपने रिक्रिएट कर लेते हैं दोबारा, और कुछ गाने दूसरे उनके रिक्रिएट करते हैं, जैसे कि तनिष्क बागची ने ओ साकी साकी उनका रिक्रिएट किया, एंड आई थिंक That was an absolutely beautiful recreation of Saki Saki. अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे गाने विशाल शेखर के लाइंड अप है मेरे पास। अब तक हम थोड़ा सा हैपनिंग गाने तो सुनते आए हैं, अब मैं आपके लिए एक रोमांटिक गाना सा प्ले करूंगी फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसके लिए विशाल शेखर ने फिल्म फेयर के अवार्ड की नॉमिनेशन भी पाई, एंड यू नो दे वर क्वाइट अप्रिशिएटेड फॉर दिस। दे वर नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और ये गाना आपको इसमें आवाज अक्सर मैं अब भी मैंने बहुत सारे गाने आपके लिए प्ले किए जिसमें विशाल की आवाज आपको सुनने को मिली, बट दिस सॉन्ग हैज दैट मीठी खूबसूरत शेखर की आवाज। एंजॉय।

व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, जिसमें आपको विशाल नहीं बल्कि शेखर की आवाज़ सुनाई दी, और शेखर की आवाज़ इतनी मीठी और इतनी मतलब जितनी हैपनिंग विशाल की आवाज़ है उतनी ही कंपोज्ड और काम शेखर की आवाज़ है. एंड व्हाट अ जोड़ी बोथ ऑफ दीज हैव, विशाल एंड शेखर, जो आपके लिए आ रहे हैं जुलाई 12th को कर्टिस कलवल सेंटर में. cashpatelproductions.com पे जाके टिकट खरीदना बिल्कुल मत भूलिए. 30% ऑफ आपको मिलेगा व्हेन यू यूज द प्रोमो कोड FUNASIA, FUNASIA. अच्छा जी, इसी के साथ एक बहुत और ज़रूरी बात आपको बतानी है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी ट्रक या फिर कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, या फिर देर इज़ अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन इज़ ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. पेपर वर्क है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, द निटी ग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन है, और साथ ही साथ आपकी अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ है. सो आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए और अटर्नी उमर ख्वाजा को बाकी सारा कुछ टेक केयर करने दीजिए, बिकॉज ही एंड हिज टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि आपको कुछ पे नहीं करना अनटिल यू विन द केस. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू इन दिस स्ट्रेसफुल सिनेरियो. You are going through something like that. Someone you know or care for is going through something like that. Attorney Umar Khwaja ka number is the best help right now. That number is 469-300-5046. 469-300-5046. Attorney Umar Khwaja ka number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is Attorney Umar, O-M-A-R, attorneyumar.com. You're tuned into your afternoon drive time with Sunehri Kiran, Bollywood Spotlight on Tuesdays. Aaj ki Spotlight, Vishal Shekhar.

टैक्सी नंबर 9211 से सुन रहे थे आप ये गाना अदनान समी की आवाज में, और जॉन अब्राहम और नाना पाटेकर जी हमें इस मूवी में नजर आए थे। अच्छा जी, अगला गाना आपके लिए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स एवर क्रिएटेड, मुझे लगता है उनके टॉप 10 सॉन्ग्स में ये गाना आता है, बिकॉज ना सिर्फ उन्होंने ये गाना बनाया बल्कि हर उस आप कह लीजिए द गर्ल्स द लेडीज हु आर आउटसाइड यू नो नॉट इन दैर कंट्रीज और हम यहाँ रह रहे हैं, द डायस्पोरा ऑफ द कंट्री, दे फाउंड एन एंथम फॉर देमसेल्व्स, देसी गर्ल। जी हाँ, देसी गर्ल की बात हो रही है, वही गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ। और देसी गर्ल प्ले करने से पहले मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि जो भी आप व्यूज एंड ओपिनियंस सुनते हैं इन द लाइव अनाउंसमेंट्स एज वेल एज द इंटरव्यूज दैट वी डू हेयर ऑन आर शोज आर पेड एडवर्टीजमेंट्स एंड डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द ऑफिशियल व्यूज ऑफ द रेडियो स्टेशन nor the RJ. With that, we are heading on to one of the best songs they ever created.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
4: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ?
15: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
16: Foodistan in Aubrey. Everything desi, one place, one vibe.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
17: क्या मतलब?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
17: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
19: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
20: We

फिल्म थी आई हेट लव स्टोरीज. सिंगर म्यूजिक कंपोजर्स थे विशाल और शेखर, और सिंगर थे विशाल ददलानी, जिनकी आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे. आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है विशाल शेखर पे. उन्हीं के बनाए हुए कुछ खूबसूरत गाने आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अच्छा, एक बड़ी हैरत की बात जो मुझे, मेरा नहीं ख्याल था जब तक मैंने ये रिसर्च आपके लिए शुरू नहीं की आप बॉलीवुड स्पॉटलाइट के लिए, कि कितने अवार्ड्स मिले फिल्म फेयर के विशाल एंड शेखर को. एंड आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज दैट विशाल एंड शेखर को सिर्फ एक अवार्ड मिला है फिल्म फेयर का. नॉमिनेशंस बहुत सारी मिली लेकिन अवार्ड सिर्फ एक. और यही है आपका आज का सवाल, क्योंकि मैं लेके आई हूं आपके लिए फूडिस्तान इन ऑबरी की तरफ से एक गिव अवे, और वो है जी दैट यू विल रिसीव अ फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, जो कि एक अपस्केल रेस्टोरेंट है लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी. सबसे पहले तो मैं आपको फूडिस्तान के बारे में बताती चलूं कि आपको फ्रेश देसी ग्रोसरीज चाहिए, फ्रेश प्रोड्यूस चाहिए, हलाल मीट चाहिए, बेकरी आइटम्स चाहिए, आपको ताज़ा गन्ने का जूस चाहिए या फिर लाइव पानीपूरी स्टेशन चाहिए, और इस सब के साथ अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, तो वो सब कुछ मिलेगा आपको फूडिस्तान के अंदर, जो कि ऑबरी में लोकेटेड है. सबसे पहले ये कि फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस, एंड द स्पेशल पार्ट इज दैट दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन द ग्रोसरीज, और साथ ही साथ फ्री डिलीवरी देते हैं जी ऑन ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles. तो ये तो हुआ आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग और आपकी तमाम खाने पीने की रिक्वायरमेंट्स. और अगर अब आप फ्री आइटम जीतना चाहते हैं फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, जो कि एक अपस्केल रेस्टोरेंट है लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी, तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि विशाल शेखर को जो एक, वैसे मैंने आपको शुरू में बताया भी था, अगर आप शुरू से ये शो सुन रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली मालूम होगा कि उनको किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन आप मुझे कॉल करके बताइए वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए विशाल शेखर ने जीता था अपना पहला और वाहिद फिल्म फेयर अवार्ड. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

मतलब किसी गाने के लिए, किसी मूवी के लिए नॉमिनेशंस तो बहुत मिली मगर अवार्ड जीत नहीं पाए विशाल शेखर, हैरत की बात है, मेरे लिए एक बड़ी परेशानी वाली खबर है। बहरहाल आपसे सवाल पूछा था जी कि वो कौन सी एक वाहिद फिल्म है जिसके लिए विशाल शेखर ने जीता था फिल्म फेयर अवार्ड, एंड दैट टू द अवार्ड वॉज नॉट फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, द अवार्ड वॉज फॉर आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट। और ये थी मूवी झनकार बीट्स जो कि सुजॉय घोष ने डायरेक्ट की थी और इसका म्यूजिक जो है वो विशाल शेखर ने दिया था और इसके लिए उन्हें आर डी बर्मन अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट न्यू म्यूजिक टैलेंट। इसका एक गाना मैंने शुरू में आपके लिए प्ले भी किया था, दैट वाज द करेक्ट आंसर, झनकार बीट्स। और आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, पद्मा, आशीष, विश्वकांत, नेहा और साथ ही साथ स्वप्निल, संतोष, थैंक यू सो मच। और आपके नाम नंबर जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उस नंबर को मैं मैथ के फॉर्मूले में डाल के विनर निकालती हूं जी। और हमारे जो लकी विनर हैं वो हैं विश्वकांत मूला। विश्वकांत कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, एन अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी। दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर फ्री आइटम। कंग्रेचुलेशंस। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फनी जैसे तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए ऑलमोस्ट हर शो में लेके आता है, ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। और आपकी पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
4: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
5: Excuse me. It's called being loyal.
4: It's called being predictable.
5: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
6: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.senadainc.com today.
11: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
14: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
15: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
12: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑब्री।
14: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
16: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल। Phonasia, one of

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. ढाई बजे से पांच बजे तक हर रोज मंडे थ्रू फ्राइडे मैं आपके साथ मौजूद रहती हूं और हर रोज लेकर आते हैं आपके लिए एक डिफरेंट फ्लेवर. आज का फ्लेवर, ट्यूजडेज का फ्लेवर होता है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट डाली जाती है कुछ ऐसे सितारों पर जिन्होंने अपने काम से हमें किया एंटरटेन. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, दैट इज वॉट वी लुक फॉर. और इसी तरह के सारे गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ जो विशाल शेखर ने बनाए हैं. विशाल जो हैं वो वोकलिस्ट भी हैं ऑफकोर्स. मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंड पेंटाग्राम के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने कोलैबोरेट किया म्योजन हीप के साथ ऑन द सॉन्ग माइंड्स विदाउट फियर. और इसी के साथ शेखर जो हैं वो एक क्लासिकल सिंगर हैं जिन्होंने उस्ताद नियाज अहमद खान के अंदर ट्रेनिंग ली. ही लर्नड टू प्ले द अकॉर्डेशन फ्रॉम हिज फादर जो कि एक म्यूजिक एंथुजियास्ट थे, हसमुख रवि जानी. और शेखर वॉज अ पार्टिसिपेंट ऑफ जी टीवी सिंगिंग कॉन्टेस्ट सारे गामा पा. 1997 में शेखर ने सारे गामा पा में एंट्री ली थी. ही ऑल्सो यू नो कंपोज्ड एंड संग मराठी सॉन्ग्स और सुनिधि चौहान के साथ इन्होंने ये मराठी गाने गाए हैं 2011 में. सो दोनों का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है और जब दोनों ने मिलकर म्यूजिक देना शुरू किया तो लग गए चार चांद. और जैसे हम अभी ये बात कर रहे थे ना, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इज वॉट विशाल शेखर इज ऑल अबाउट.

हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, कि मतलब बस ये 2 मिनट आए और हेलो हाय करके चले गए, सब ठीक, ऑल ठीक, ऑल वेल, गुड, बाय बाय. नहीं, एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज आपकी सेहत needs that kind of understanding. जो डॉक्टर को आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आपके प्रॉब्लम्स को, और साथ ही साथ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ट्रीट्स यू लाइक अ फैमिली, नॉट जस्ट अ पेशेंट. तो फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर. 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल. एनजाइटी केयर हो, फाइब्रो स्कैन हो, एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हो, वाइटमिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग हो, and so much more that happens right here at Passion Health. Aap apni schedule kar sakte hain appointment by giving them a call, and that number is 214-666-6259. 214-666-6259 is that number where you can call and book your appointment. This is Passion Health Primary Care for you, because your health is their passion. Jaise hamari health hamara passion hai, the best part is that Passion Health Primary Care takes that as their passion as well. So next time you're thinking of getting an annual, go to Passion Health Primary Care. Aur ab jis gaane ki taraf main aapko leke ja rahi hoon, Vishal Shekhar ne na sirf hum ek bahut happening gaane diye balki bahut melodious aur bahut hi zyada romantic gaane bhi diye. This is one of them.

जी हाँ, फिल्म सुल्तान से आप सुन रहे थे ये गाना. 2017 में ये मूवी आई एंड सुल्तान मूवी के लिए नॉमिनेट हुए थे विशाल शेखर एक बार फिर म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर फिल्म फेयर. मगर जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हैरत की बात है कि नॉमिनेशंस बहुत पाई उन्होंने लेकिन सिवाय एक अवार्ड के कभी अवार्ड फिल्म फेयर पे नहीं जीता. और डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में जीते बट नॉट ऑन फिल्म फेयर. सो लेट मी गिव यू अ डिटेल ऑफ ऑल दी मूवीज दैट दे वर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर. सो 2004 में उनको न्यू म्यूजिक टैलेंट का अवार्ड मिला. दैट वाज द ओनली अवार्ड दैट दे रिसीव फ्रॉम फिल्म फेयर व्हिच वाज द न्यू म्यूजिक टैलेंट, आर डी बर्मन न्यू म्यूजिक टैलेंट अवार्ड फॉर द मूवी झनकार बीट्स. 2006 में दे गॉट नॉमिनेटेड फॉर दस मूवी, दस बहाने करके ले गए दिलवाली. उसके बाद 2008 में ओम शांति ओम के लिए नॉमिनेट हुए बट आई एम सरप्राइज वो ओम शांति ओम के लिए भी नहीं जीते. 2009 में दोस्ताना के लिए नॉमिनेट हुए, दे डिडंट विन. 2011 में अनजाना अनजानी और आई हेट लव स्टोरीज के लिए नॉमिनेट हुए, स्टिल नो विन. उसके बाद 2012 में रावण के लिए नॉमिनेट हुए, 2013 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए 2014 में नॉमिनेट हुए, सुल्तान के लिए 2017, भारत के लिए 2020 और पठान के लिए 2024 में नॉमिनेट हुए, बट स्टिल नो विन. आई एम सो डिसहार्टेंड.

0: अच्छा, आपको विशाल और शेखर के मिलने की एक मजे की कहानी सुनाती हूँ, और वो ये कि सुजल महेश्वरी और विशाल ददलानी जो हैं वो पेंटाग्राम टीममेट्स के साथ उन्होंने एक बॉलीवुड डेब्यू किया अपना और कंपोज किए ट्रैक्स फॉर द मूवी प्यार में कभी कभी, जिसका मैंने अभी आपको मुसु मुसु हासी सुनाया था, और वो पहली बार ये दोनों गाने बड़े हिट थे। और कोइंसिडेंटली विशाल ददलानी के बचपन के दोस्त शेखर रविजानी भी उस फिल्म के लिए कुछ ट्रैक्स कंपोज कर रहे थे, और उनमें से एक था दिल से दूर न जाना। और ये दोनों बचपन के दोस्त वहां स्टूडियो में दोबारा मिले व्हाइल रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स फॉर द फिल्म, और वहां उन्होंने डिसाइड किया कि दे शुड टीम अप टुगेदर टू राइट म्यूजिक फॉर बॉलीवुड फिल्म्स, और फिर वहां से जोड़ी बनी विशाल और शेखर की। तो ये था आगाज विशाल शेखर के डुओ का। फिर देयर फर्स्ट कॉम्पोजिशन इन बॉलीवुड एज अ डुओ वाज द गेस्ट कंपोजर फॉर पद्म कुमार चैंपियन, जिसमें उन्होंने ऐसा चैंपियन कहाँ कंपोज किया, और फिर उसके बाद जो है वो फिल्मों का ताना बाना बंद किया, एंड दैट्स हाउ यू नो देयर जर्नी स्टार्टेड, एंड देन वो कहते हैं ना देयर इज नो लुकिंग बैक। सो दिस वाज विशाल शेखर फॉर यू। अभी आधा घंटा और मेरे पास आपके साथ मौजूद है, जिसमें मैं आपके लिए कुछ विशाल शेखर के ही बनाए हुए गाने प्ले करूंगी। बट आफ्टर दिस हाफ एन आवर आई हैव सो मच लाइंड अप फॉर यू, ट्रैफिक, करेंसी, वेदर, गोल्ड प्राइस अपडेट, एज वेल एज ड्रीम होम मॉर्गेज, एक्चुअली एज वेल एज उरा जो हमारे साथ आज कनेक्ट होंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya, adults aur bachchon ke liye primary care, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़र वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
5: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
6: इट्स लॉसन।
5: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
6: इट्स लॉसन।
7: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
8: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स, गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458, द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, Lawson Travel.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो, एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
14: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
18: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
6: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
7: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
16: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
19: मामू, देखो क्या हो गया?
20: ओ, क्या हो गया?
19: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
20: ओए, जर्मन का कमाल है.
19: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
20: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
21: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
22: यू आर अर्निंग वेल, बट आर यू पेइंग मोर टैक्सेस देन यू नीड टू? इफ यू आर अ बिजनेस ओनर अर्निंग मोर देन $200,000 एनुअली, देन दिस सेमिनार इज फॉर यू. जॉइन AG Fintax फॉर अ फ्री टैक्स प्लानिंग सेमिनार एंड डिस्कवर लीगल स्ट्रेटजीज दैट मे हेल्प रिड्यूस योर टैक्स बर्डन थ्रू स्मार्ट प्लानिंग. ऑन July 10th, 6 PM onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG Fintax. Plan smart, save more.
23: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
24: कितने आदमी थे?
25: सरकार पूरा का पूरा डेरिस फनीशिया सुनता है.

0: And with that, it is time now to connect you with our URA Debt Relief segment. हमारे साथ मौजूद हैं Mr. Aman, जो हमें बताएंगे कि URA Debt Relief आपको कैसे help करता है to make smarter financial choices. Let's welcome him on the Airwaves of Phanasia. Good afternoon, Aman ji. How are you doing?
1: गुड आफ्टरनून फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को URA और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्ते. तो दोस्तों आज जुलाई का 7वां दिन है, यानी कि ये महीना चल निकला है. वो गलती हम बिल्कुल ना करें जो पिछले महीने या उससे पिछले महीने हमने की थी. सो हमें ये सोचना होगा कि अगर क्रेडिट कार्ड का कर्जा पिछले महीने नहीं उतरा मिनिमम पेमेंट देकर या पिछले साल भी नहीं उतरा, यानी कि क्रेडिट कार्ड 40% आपका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं है, सिर्फ लटकता है. तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतरे, आप डेट फ्री हो जाएं, तो आप URA को कॉल कर सकते हैं. URA आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स, आपके, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के, इन सब के क्रेडिट कार्ड्स की एक पेमेंट बना देगा, ताकि आपकी बजटिंग इजी हो जाए और उसमें से आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा जो आपको नहीं देना है. सो आधा कर्जा अगर आपको माफ हो जाए, इंटरेस्ट भी माफ हो जाए, तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है. तो जल्दी से झटपट से आपका कर्जा उतर जाएगा. अगर क्रेडिट कार्ड के साथ साथ कोई पर्सनल लोन भी ले रखा है या कोई गाड़ी जो रीपोजेस हो गई बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, आजकल बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, ट्रक ड्राइवर्स के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर गाड़ी, ट्रक या कार रीपोजेस हो चुकी है, तो उसका लोन भी स्टिल आपके सर पर है, उसको भी आप आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं. या फिर गाड़ी टोटल हो गई है किसी कारण, और चाहे आपकी गलती नहीं थी लेकिन गाड़ी टोटल हो गई लेकिन लोन स्टिल आपके सर पर है, उसको भी आधे से ज्यादा नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है. तो अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हैं, तो झट से कॉल कीजिए URA को मिनिमम पेमेंट करने से पहले. हो सकता है इस महीने की मिनिमम पेमेंट आप आज या कल में करने वाले हों, तो जरा रुक जाइए, एक बार कॉल जरूर कीजिए 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर है 916-776-3555, 916-776-3555, अगेन 916-776-3555. और मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल करेंगे तो आधा कर्जा माफ.
0: थैंक यू सो मच अमन जी, विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.

And with that, it is time now to give you the gold price update. Kahan hai ji sona, kis bhav stand kar raha hai aaj? According to goldprice.org right now, which is Tuesday, July the 7th, gold price per ounce is waqt hai $4,105.73. Jabki 1 gram sone ki keemat right now is $132. Kal ki nisbat 1 gram sone ki keemat mein $1.61 ki kami hui, jabki 1 ounce sone ki keemat mein $49.95 ki kami dekhne mein mili. That's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran. Is gaane ke us paar aapko bataungi traffic update. Lekin usse pehle aapko batana chahti hoon, agar aap soccer ke matches dekh rahe hain, football ke matches dekh rahe hain, to ji aaj ki taza khabar, Argentina ne hara diya hai Egypt ko aur pahunch gaye hain quarter finals mein, aur ab बस ये मैच चल रहा है स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के दरमियान, और फैसला हो जाएगा सारी क्वार्टर फाइनल की टीम्स का. फ्रांस मोरक्को को फेस करेगी थर्सडे जुलाई 9th को हमारे टाइम के हिसाब से 3 बजे दोपहर. स्पेन बेल्जियम को फेस करेगा फ्राइडे को 2 बजे दोपहर को. नॉर्वे इंग्लैंड को फेस करेगा सैटरडे को 4 बजे शाम, दोपहर और शाम. और चौथा क्वार्टर फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड या कोलंबिया में से किसी एक के साथ सैटरडे जुलाई 11th को 8 बजे. फिर सेमीफाइनल्स की दौर आएगा जो कि ट्यूसडे और वेंसडे को होंगे दोपहर 2 बजे, और फिर थर्ड प्लेस के लिए प्ले ऑफ होगा. एंड देन द फाइनल विल हैपन फॉर यू ऑन जुलाई द 19th, विच इज अ संडे एट 2 PM. सो बताइए क्या आपकी फेवरेट टीम है इस क्वार्टर फाइनल में.

0: जी हाँ, विशाल शेखर का कंपोज्ड म्यूजिक, सिंगर थे विशाल ददलानी, लिरिसिस्ट भी विशाल ददलानी। इसी गाने के साथ आज हम बॉलीवुड स्पॉटलाइट, जिसमें हमने स्पॉटलाइट डाली विशाल और शेखर के यू नो कॉम्पोजिशन ड्यूओ पे, हम कर रहे हैं इख्तिताम। और आपको एक झलक दिखाई मैंने कि जो कॉन्सर्ट होने वाला है July 12th, विच इज संडे, एट कर्टिस कलवल सेंटर, उसमें आपको कितने मजे मजे के गाने सुनने को मिलने वाले हैं। डू नॉट मिस इट। अगर आपने अब तक टिकट्स नहीं खरीदे तो cashpatelproductions.com अपनी वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जाइए, लॉग ऑन कीजिए और टिकट खरीदिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड FUNASIA FUNASIA टू गेट योर 30% ऑफ। और इसके साथ वी आर रैपिंग अप विद अ क्विक ट्रैफिक अपडेट। देयर इज अ कोलिजन जो कि नजर आ रहा है जी IH30 टुवर्ड्स SH360 ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड। द सिवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई। और अभी कोई 10 मिनट पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है वेरीफाई होके, तो काफी बैकअप आपको इस स्पॉट पे नजर आने वाला है। देयर इज अनदर कोलिजन दैट हैज बीन रिपोर्टेड एट 175 टुवर्ड्स FM 2578 ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 4 out of 5 लेन्स आर ब्लॉक्ड। लॉट्स ऑफ बैकअप एट दिस स्पॉट, सिवेरिटी इज एक्सट्रीमली हाई, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर रीचिंग दीज स्पॉट्स। अदर देन दैट, द रोड्स ऑफ डैलस आर प्रीटी मच क्लियर फॉर यू। खैरियत से जाइए, बी हैप्पी, बी सेफ एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। आई विल सी यू टुमारो 2:30 till 5.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
10: Haan, dekh lenge.
9: To fir India ki ticket kab karwaye?
10: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
11: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलस न्यूएस्ट।
12: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
13: Calculating route, rerouting.
12: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
13: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort

0: Dallas's newest.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route, rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
2: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
2: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं ही तो।
9: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
10: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
9: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
16: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: लाब जंजुआ वर सिंगिंग दैट ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी सिंग इज किंग, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, प्रीतम साहब का म्यूजिक एंड द मूवी वाज वंडरफुल यार, मतलब मजेदार, फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड दैट्स द वे मूवीज शुड बी। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर वेरी ओन अटर्नी ओमर ख्वाजा। दिस इज द नेम दैट यू नीड टू हैव हैंडी, कभी भी कभी आप एक्सीडेंट में कार या ट्रक या स्लिप एंड फॉल में इन्वॉल्व हो, although I wish that you never go through that problem, but agar ye musibat sataye aapko ye naam yaad rakhna hai, that's the time when you'll need to call him because he will fight for you with the insurance companies, make sure ki aapko jo due compensation banti hai wo zarur mile, and it's quite a stressful time, to us stress ko dur karte hain attorney omar, and the website for you where you have to go is attorneyomar.com।
1: qatl karti hain nigahein ki dil ko khabar na ho, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: रिमेंबर द डे 12th of July इस संडे को आ रहे हैं जी विशाल शेखर राइट हियर इन DFW एट द कर्टिस कलवल सेंटर। अगर अभी तक आपने टिकटें नहीं ली हैं तो भैया किस बात की इंतजार कर रहे हैं, टिकट्स आर गोना गेट सोल्ड आउट, इट इज गोइंग वेरी क्विकली, कुछ ही सीटें बची हैं भैया। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस पावर पैक शो गो टू द वेबसाइट cashpatelproductions.com। दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी बेबी डू डाई डू, ब्रेक के बाद आया वापस आपके पास, डोंट गो एनीवेयर।
1: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था, ना वो हेल्प कर रहे थे ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक उनके जिम्मेदारी।
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन। Available. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
6: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
12: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And this 926-641.

इंसानों का डॉक्टर होता है, जानवरों का भी डॉक्टर है। कभी सोचा है कि अगर फलों का भी डॉक्टर होता तो लंगड़ा आम आज अपने पैरों पर खड़ा होता?

0: 5:24 in the studio clock, 5:24. आज की तारीख है जी जुलाई की 7 तारीख है. जुलाई स्पेशल फॉर मी बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ बर्थडेज इन जुलाई इन माय फैमिली. मेरी चाची का बर्थडे होता है 11th को. माय कजन सिस्टर इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. देन माय ब्रदर इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन द 16th. वन इज सेलिब्रेटिंग दैट ऑन द 15th एंड वन गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज सेलिब्रेटिंग ऑन 31st. बर्थडे इज बर्थडे.
1: पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास.
0: This part of the show is brought to you by Malabar Gold and Diamond. They are one of the best stores. If you talk about jewelry selection, then मैं कहूँगा कि Malabar Gold and Diamond पे जाइए. You will not be disappointed. They have a wonderful showroom right here in Frisco, and they will add sparkle to your special moments. Be that diamonds, या फिर gold, या फिर timeless pieces crafted to shine. Malabar Gold and Diamond on Preston Road in Frisco brings everything to you. From beautiful rings and earrings to dazzling necklaces, contemporary diamond styles, find the perfect piece for your engagement, anniversary ho, celebration ho, or simply treating yourself. Because, hey, life aapki hai, khush rakhna aapko aapka kaam hai. And unka bhi hai, jinhone aapse shaadi kari hai. To aap dono milke apni khushi manaiye. Or jaiye Malabar Gold and Diamond pe. For now, I'm taking you to a lovely track for all the couples out there. Here we go.

ना जा ना जा ना जा ना ना मित्रा, तो दूर ये गाना रिक्वेस्ट किया था जी हमारे बेग साहब हैं, बेग भाई, आई होप दैट यू एंजॉयड दिस ट्रैक दैट यू हैड रिक्वेस्टेड फॉर। एक गाने का और वक्त है, उसके बाद जाऊंगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद ब्रेक के पास। बट एज आई कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आई हैव अ गिव अवे कमिंग अप फॉर यू, जो कि है जी मिराज लाउंज से, विच इज हुक्का लाउंज राइट हियर इन द हार्ट ऑफ मिकिनी, इट्स ऑन मिकिनी रैंच पार्कवे। एंड अगर आपको हुक्का का शौक है या आपको वैसे ही अच्छा खाना खाना है, दे हैव सम वंडरफुल फूड, वी एज अ टीम वेंट लास्ट वीक एंड दे सर्व्ड अस सम अमेजिंग फूड, तो जाके उनका खाना ट्राई कर सकते हैं एंड यू आर गोना गेट $20 ऑफ योर $50 ऑर्डर। ठीक है जी, आपको करना क्या है, एक सवाल का जवाब देना होता है, वो सवाल कौन सा है बताता हूँ। पहले आपको ले चलता हूँ जी एक गाने की तरफ एंड कमिंग बैक विद दैट क्वेश्चन फॉर यू।

0: सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे इज मनजोत सिंह जी, हां, द एक्टर हु वाज द सर्डी गाय इन ओए लकी लकी ओए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फुकरे, एंड वन द फिल्म फेयर अवार्ड क्रिटिक्स फॉर बेस्ट एक्टर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन ओए लकी लकी ओए. टुडे मार्क्स हिज बर्थडे, 7th ऑफ जुलाई 1992. अ वेरी हैप्पी बर्थडे मनजोत पाजी फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बंदा. एक छोटा सा ब्रेक लेके अभी आया वापस विद मिराज लाउंज.
1: कहां गया, कहां रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहां है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: ये तारा वो तारा हर तारा.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: ये तेरा घर, ये मेरा घर.
5: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
6: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
5: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
3: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
9: प्रीतेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
12: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
13: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

आपको लग रहा है आपकी उम्र हो गई है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या कर रहे हो आप लोग? आमिर खान को देखो, 61 की उम्र में भैया तीसरी शादी कर चुके हैं। आमिर भाई खैर उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे कुछ लेना देना इससे है नहीं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी मतलब कहाँ तक वो जाएंगे, कब उनका सब्र जो है ना, कहते हैं बस हो गया यार, अब लाइफ ठीक है। तो लगता है एक और चांस है, कोई 72-73 के आसपास होगा क्या, वो तो वक्त बताएगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटेक्स। इफ यू नॉट डन योर टैक्सेस येट तो जरूर एजी फिनटेक्स से एक बार ही कॉन्टैक्ट करें। दे आर अ फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, एंड दे ऑल्सो डू टैक्स प्लानिंग, उसके साथ साथ आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करके देते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग दैट यू नीड टू डू, बिकॉज एज यू आर ग्रोइंग ओल्डर वंस यू रिटायर, आपको इनकम जो आपकी अब है अगर वैसी ही तब हो तो जिंदगी जबरदस्त हो जाए। और ऐसे ऑप्शंस हैं, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द वेबसाइट agfintax.com एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं ना कि कदम अपना पहले उठाना पड़ता है, आगे चीजें तो अपने आप होती हैं, बट यू हैव टू मेक दैट फर्स्ट चॉइस। सो गो पिक अप योर इंटरनेट टैबलेट फोन व्हाटएवर व्हेनेवर यू गेट टाइम, अभी नहीं, घर जाके agfintax.com पे जाइए एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू गेट योर टैक्सेस सॉर्टेड। अब मैंने कहा था जी कि मिराज लाउंज की तरफ से आई एम गोना गिव यू अ गिव अवे व्हिच इज फॉर $20 ऑफ देयर $50 बिल। उसमें आप हुक्का ले सकते हैं, उसमें आप खाना पीना ले सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन बाय। एंड वेन यू स्पेंड $50, $20 एकदम छू मंतर हो जाएंगे। कैसे वो तो मिराज वाले बताएंगे, मैं आपको दे रहा हूँ मौका टू विन दिस गिव अवे फ्रॉम फनेजिया एंड आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन। जो देगा सही जवाब उसको मिलेगा जी ये वाला गिव अवे। कॉलर नंबर 3 एज ऑलवेज, सवाल क्या है जी? आज वी आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे एंड दिस इज ऑफ डायरेक्टर साहब है और इनका बर्थडे आज के दिन है। ही मेड कपल ऑफ मूवीज विच रियली स्टूड आउट, जैसे कि भाग मिल्खा भाग, और उसके लिए मिले थे 2 फिल्म फॉर अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर। उसी फिल्म का एक गाना लगा रहा हूँ, आपने बताना है कि कौन है ये जिनकी मैं कर रहा हूँ बात। सिंपल यार, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल।

विली विली विली विली विली विली तो ठीक है, पहले आपको ये बता दूं कि ये मिकिनी में लोकेटेड है, राइट ऑन मिकिनी रैंच पार्कवे। एंड इफ यू आर गोना पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, प्लीज मेक श्योर कि आप मिकिनी जाके इस डील को एंजॉय करें। $20 ऑफ योर $50 बिल फ्रॉम मिराज हुक्का लाउंज।

0: घुलमिल घुलमिल लौंडा, घुलमिल घुलमिल फन एशिया रेडियो। हुज दिस? कौन बोल रहे हैं जी? गुड इवनिंग, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं आगे जाऊं।
1: हेलो।
0: हाय, आ गई आ गई आ गई आ गई। गुड इवनिंग, कैसी हैं? नमस्ते।
1: गुड इवनिंग,
0: कौन बोल रही हैं?
1: इट्स राकेश ओम प्रकाश मेरा।
0: आप कौन बोल रही हैं? राकेश तो आपका नाम थोड़ी हो सकता।
1: नहीं, मैं पल्लवी बोल रही हूँ।
0: राकेश ही हो सकता। पल्लवी जी?
1: मैं पल्लवी बोल रही हूँ जी।
0: पल्लवी जी, ये छोटी नन्नी मुन्नी है कि नन्ना मुन्ना है?
1: ये पीछे जो है नन्ना मुन्ना है।
0: नन्ने मुन्ने को मेरा हेलो दीजिएगा। पल्लवी कहती हैं, क्या नाम बोले आप?
1: राकेश ओम प्रकाश मेहरा।
0: राकेश ओम प्रकाश मेहरा कॉलर नंबर वन पे थी पल्लवी जी, दूसरे नंबर पे कौन है? फनेजिया, गुड इवनिंग।
2: हाय मार्विन, दिस इज पवन हियर।
0: हाय पवन, पल्लवी और पवन, तीसरा कौन होगा देखेंगे, पर दूसरे नंबर पे आप हो। पवन साहब, किसकी बात कर रहा हूँ?
2: आई थिंक इट्स राकेश ओम प्रकाश मेहरा।
0: राकेश ओम प्रकाश मेहरा कहते हैं जी, ये तीसरे नंबर पे कौन है जो बन सकता है लकी विनर? गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, हुज दिस?
3: दिस इज रितु गुप्ता।
0: रितु जी, कैसी हैं?
3: मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं।
0: ऊपर वाला मेहरबान है, खुली मेरी दुकान है, 7 बजे तक चलेगी। जलेबियां वगैरह खत्म हो गई थी, थोड़े से पकौड़े और चटनी है, चलेगी? अच्छा ये बताइए रितु जी मुझे क्विकली कि आप मिकिनी जा सकती हैं?
3: जी हाँ।
0: Alright, then tell me which director I'm talking about.
3: राकेश ओम प्रकाश मेहरा
0: इज द राइट आंसर। रितु जी, $20 ऑफ योर $50 बिल कमिंग अप फ्रॉम मिराज लाउंज। यू होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर। मिकिनी रैंच पार्कवे पे लोकेटेड है। इट इज बहुत अच्छी, जबरदस्त नई जगह बनाई है। यू गो, यू एंजॉय, एंड इफ यू लाइक हुक्का एंड सम गुड फूड, देन डेफिनेटली मिराज इज द प्लेस। And yes, indeed, Rakesh Om Prakash Mehra celebrating his birthday today, 7th of July 1963. Rang De Basanti film, aap sabne dekhi hai, and I think one of my all-time favorite films. And uske saath saath ye jo maine abhi gana chalaya tha, this was also from one of his films, jiska naam tha ji Bhaag Milka Bhaag. Bahut saari aur filmein hai, but I think these two stand out. And he was born on today's date in Delhi in the year 1963, making him 62 years of age. Ab jab inki baat ki hai, to I do want to play the track from the movie Rang De Basanti. And a very happy birthday to Mr. Om Prakash Mehra Saab. Ye na, Rakesh Om Prakash Mehra. Happy birthday, sir.

0: legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
1: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
0: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
1: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
0: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
0: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

Beautiful track that just got released 17 hours ago. This is called Ve Janoon. Awarapan 2 se liya gaya ji ye gana. Imran Hashmi and Disha Patani are in this movie. And this time, Mithun is coming back with his voice alongside Vishesh Bhatt. I think it's going to be a fantastic movie. Mujhe pehli Awarapan bhi bahut achhi lagi thi. And I think Imran Hashmi has something special about him. He's different and he's got his own fan following. And I like him. I think he's got good skills. And certain scenes he does really, really well. You are listening to the Evening Drive Time show right here on Fun Asia. Welcome back. It's 6:09 in the studio clock. And this part of the show is brought to you by Tandoori Flame. Agar abhi tak aapne inka khana nahi khaya, they are in Garland, right on Shiloh and George Bush. And what they do is, of course, Punjabi khano ki specialization hai ji. Yahan pe na inki ek item milti hai. And uska naam hai Gobi Manchurian. I'm telling you, आपने ऐसा गोभी मंचूरियन अपनी जिंदगी में नहीं खाया होगा. इट इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू थिंक ऑफ मंचूरियन एज गोभी मंचूरियन. बट आप जाएंगे, खाएंगे तो मुझे कॉल करके जरूर बताएंगे हाउ डिड यू फाइंड देयर गोभी मंचूरियन. एंड आई एम टेलिंग यू, मुंह में पानी आ रहा है भाई. दे रियली मेक इट वेरी स्पेशल. आजकल के बच्चे देखो जी, फिफ्थ क्लास में, चौथी क्लास में फ़ोन है उनके पास. हमारे को तो पाँचवीं के बाद ये होता था कि चलो छःवीं में जाएंगे, पेन लगेगा, है ना. उस पेन को ऐसा हम सोच के खुश हो जाते थे कि यार हाँ, पांचवी खत्म, सिक्स्थ में जाएंगे, पेन से लिखना शुरू करेंगे. हमें क्या पता था इन डिसगाइज हमारी वाट लगने वाली है बेड़ू. फॉर नाउ इट इज अ बर्थडे सेलिब्रेशन एंड आई लव दिस आर्टिस्ट. इनका नाम है, पहले गाना सुनो फिर आगे करते हैं इनकी बात. हियर वी गो.

जज्बा। कैलाश खेर साहब का जन्मदिन आज ही के दिन होता है जी, 7th of July 1973। ही इज टुडे 52 ईयर्स ऑफ एज। दिल्ली में इनका जन्म हुआ। इंडियन प्लेबैक सिंगर, लाइव परफॉर्मर एंड कंपोजर। आई पर्सनली लव लव लव हिज म्यूजिक। मतलब जब ये आए थे, पहला गाना जो पॉपुलर हुआ था वो था अल्लाह के बंदे, एंड द मूवी वॉज कॉल्ड वैसा भी होता है 2003 में अरशद वारसी साहब के साथ। एंड दैट सॉन्ग जस्ट यू नो आई पर्सनली जस्ट फेल इन लव विद दैट ट्रैक। उसकी चाहे लिरिक्स बोल लो आप, चाहे उसकी कॉम्पोजिशन बोल लो, चाहे जिस तरह गाया उन्होंने, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस वंडरफुल आर्टिस्ट एंड ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे। बहुत सारे और भी गाने इनके हैं जो कि बहुत बहुत पॉपुलर हुए हैं, एंड उनमें से सैयां इज वन ऑफ देम। मतलब लिस्ट ऐसी है कि इनके गानों लंबे गाने, मतलब लंबी लिस्ट है इनके गानों की, एंड आई पर्सनली इन्जॉय लिसनिंग टू हिम। एक गाना मैं इनका और शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ द ट्रैक दैट गॉट हिम नोटिस्ड, एंड दैट वॉज दिस वन फ्रॉम द मूवी वैसा भी होता है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू कैलाश खेर साहब फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास।

0: आज ही के दिन का जन्म हुआ था जी, विनोद नगर, अ विलेज इन द मयूर विहार एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली। इज फादर मेहर सिंह खेर वॉज अ ट्रेडिशनल फोक सिंगर एंड इज मदर इज चंद्रकांता मेहर सिंह खेर। खेर स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन मेरठ यूपी, और वहाँ हम बड़े होने के बाद बस शौक तो था ही इनको, फोक म्यूजिक और क्लासिकल की ट्रेनिंग ली एंड देन परस्यूड हिज करियर। सम ड्रीम्स आर देयर टू सी एंड अकॉम्प्लिश। एक ब्रेक के बाद आया।
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है, अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए। और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

from the movie Lagan, Teen Guna Lagan, Dena Parega. That was the movie and beautiful music. इस फिल्म में ए आर रहमान साहब ने क्या मैजिक किया ना अपनी म्यूजिक के साथ. अलका याग्निक, ब्यूटिफुल सिंगर. अनफॉर्चुनेटली यू नो शी इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज इन हर लाइफ विद लूजिंग हर हियरिंग, एंड आई थिंक हम जितने गाने उनके सुनते हैं, सच अ स्वीट मेलोडियस वॉइस शी कैरीज, बट सच इज फेट. जिंदगी में कभी क्या हो जाए हमें मालूम नहीं होता, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सर्टन थिंग्स यू कॉन्ट रियली डू एनीथिंग अबाउट, जैसे अलका याग्निक जी को इसमें कोई सेहत वाली चक्कर नहीं था, बट समथिंग हैड टू हैपन. नॉनदलेस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पीसीपी, यानी कि आपने अभी तक अपना प्राइमरी केयर फिजिशियन नहीं चूज किया है, या अगर आपने कोई पीसीपी रखा है बट दे आर फार फ्रॉम यू, देन आई एम टेलिंग यू देयर इज अ लोकेशन नियर यू फॉर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दे आर इन मल्टीपल लोकेशंस, हर सिटी में एक ना एक पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर जरूर है, एंड दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू. नाउ व्हाट इट मेक्स देम स्पेशल, 30 मिनट का कंसल्ट होता है एवरी टाइम यू गो टू अ डॉक्टर्स विजिट. यूजुअली कोई भी डॉक्टर है आपको 5-10 मिनट मिलता है, एंड समटाइम्स तो आपको डॉक्टर मिलता ही नहीं है. यू नो द नर्सेज कम एंड मीट यू एंड टेक केयर ऑफ योर सिकनेस एंड देन रिकमेंड यू समथिंग, बट हेयर दे टेक 30 मिनट्स. दे मेक श्योर कि आपको फुली अंडरस्टैंड किया जाए, बिकॉज इट्स योर हेल्थ, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स. सेकेंड बात यह है कि आप जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, दोज ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर योर पेरेंट्स एज वेल, एंड दैट इज एट पैशन प्राइमरी हेल्थ, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. दे हैव मल्टीपल लोकेशन लाइक I said, and they are growing. If you want to grow with them, if you are in the medical field, if you're a doctor, endocrinologist, if you're a pediatrician, they are hiring, and you can send your resume to primaryhealthcarephysicians@gmail.com. that's passionhealthprimarycarephysicians@gmail.com. that's the one, passionhealthprimarycarephysicians@gmail.com. take you to the agla gana, and kuch birthdays aur hain jo main share karunga as we progress in our show. For now it's 6:32, and on today's date in 2019, the US women's football soccer team defeated the Netherlands to win in its fourth World Cup. Aaj hi ke din, that was the 7th of July, the year was 2019, when the US women's soccer team defeated the Netherlands and won their fourth World Cup. Little part of history there for you. आज का गेम जो इजिप्ट और अर्जेंटीना का हुआ जनाब, उसमें कुछ ना कुछ झोल है. लोगों की लेफ्ट राइट से कंप्लेंट आ रही है कि यार रिग्ड है मैच और ये है और वो है, मैंने मैच देखा नहीं है. बट आई'd लाइक टू हेयर फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड. फॉर नाउ इट इज श्वेता पंडित विद हर सोलफुल वॉइस, बिकॉज व्हाई, वेल इट्स हर बर्थडे टू. हॉरर फिल्म में ना जब लड़की को दिखाते हैं कि अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो ऐसे पूछती है, कौन है वहाँ, कौन है, जैसे भूत बोलेगा मैं हूँ, मैगी बना रहा हूँ, खाएगी.

0: आवारापन कोई सजा नहीं, इबादत है।
1: I'm excited for this one. This is Awarapan 2, which is releasing very soon. Aa chuka hai ji aapke liye PMJ Jewelers right now in DFW, and they bring 60 years of craftsmanship with them. To agar aap jewelry lena chahte hain is season, and jewelry is always good, especially if you're buying gold, then you are definitely in good hands. Kyunki aaj tak itihas gawa hai bhaiya, kabhi nuksan hua hi nahi hai. To jo aap investment karenge, that will always grow when you buy gold with PMJ. Now they are coming to Frisco. Ho chuka hai ji yahan pe inka opening, and timeless, bahut achhe क्राफ्ट्समैनशिप के साथ ये लेके आए अपना स्टोर आपके लिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप यहां जाते हैं, दे डोंट रश यू, द स्टाफ इज वेरी नाइस. आई बीन टू द स्टोर, एंड मेरा यही सजेशन होता है, जब भी आप सोना लेने जाएं या डायमंड लेने जाएं, टेक योर टाइम, डोंट गो इन अ रश. ऐसा ना हो कि हस्बैंड बोले मुझे वहां जाना है, मेरी मीटिंग है, तो तब जाने का कोई फायदा नहीं है. राधा लेडीज टाइम करा करो, आप खुद चले जाया करो अपनी दोस्तों के साथ, एंड जस्ट हैंड इन द बिल. दैट्स द वे टू गो मैन. पीएमजे इज नाउ ओपन फॉर यू राइट हियर इन फ्रिस्को, प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा गटामनेनी. महमस धोनी इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. यार मतलब एक ऐसा प्लेयर, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना कमाल का खेलते थे, एंड द वे ही इज सेव्ड इंडिया सो मेनी टाइम्स. आई थिंक इनका नाम जितना भी हम प्रेज करें, जितना भी हम इनके बारे में बोलें, कम है. बट ही वॉज ऑल्सो बॉर्न ऑन द 7th of July 1981. ही इज 45 ईयर्स ऑफ एज. रांची ऑफकोर्स बिहार से बिलोंग करते हैं, जहाँ का चंपारण मटन अभी तक मैंने खाया नहीं है. इसके पीछे मैं लगा हूँ, और एक ना एक दिन ज़रूर जाके वहाँ का चंपारण मटन वहीं जाके बैठ के खाएंगे तो आएगा मज़ा. खैर, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से महेंद्र सिंह धोनी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास. एक गाना उन्हीं की फिल्म से हो जाए. लो

All right, well, that is a wrap from my side. After me is going to be Ippy the Hippie entertaining you all the way till 10 o'clock. Mera ho gaya ji waqt aaj ke liye aapse ijazat dene ka, but duaon mein yaad rakhiyega, I'll do the same for you. एंड हमेशा अपना ख्याल जो है भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी बीवी, आपका घर, आपका बच्चा, आपका पैशन, आपके शौक, ये सब कुछ अधूरे हैं भैया इफ़ यू आर इनकम्प्लीट. एंड दैट मीन्स इफ़ यू आर अनवेल, इफ़ यू आर अनहेल्दी, तो भैया जी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज़ गोना कम इन टू पीसेस एंड जस्ट यू नो कहते हैं ना वो जो पजल होती है ना जिक्सो, उसकी तरह सारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी आपकी. वंस यू द सेंटर ऑफ योर लाइफ मेक श्योर दैट यू आर वेल. विद दैट, it is good night. Adios.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग। दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन। ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
3: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, I'm tired of the same food.
4: Excuse me, it's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Hey Maps, take me to my Desi grocery store.